0: किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुरानी, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। जिस दिन देखूं जिनके सपने हो बैठूं वो प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जी के रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं तनाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दांतों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां विरह की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझते वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, हाँ समझा था मैं ये है खरी, लेकिन वहाँ कोई और थी, इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

इनको भी है मेरा खुमार इनको भी है इनके लिए है मोहतरम खेड़ा किसी और को था खुदा की कसम था देखिए साहिबो वो कोई और की और ये नाज़नी है मेरी मैं इनसे मरता हूँ।

हम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी, मैं इनसे मरता हूँ।

मुस्कम सही मैं सादा दिल मुझे जिम सही इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम देखिए साहिब वो कोई और थी।

ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ, देखिए साहिबो वो कोई और थी। और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

0: अच्छा
1: गुड मॉर्निंग
0: छोड़ हाथ
2: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
0: अरे 1 2 3 4 वाला हाथ
2: मैं कैसे 1 2 3 4
0: तुम भी थप्पड़ रखे
2: आवर के डाबर
0: अरे बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला
3: कॉपी वाटर स्टैंड राइट हैंड बंदूक बैंड तीन पटाखे।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आकाश पर चमकते हुए उस प्रकाश पुंज में भी ईश्वर का अंश है, और धरती की धूल के कणकण में भी वही समाया है। सच तो ये है कि हम प्राणियों को भी बस उसी शक्ति का साया है।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM और मैं हूं आपका हम सफर सनी। लेकर आया हूं प्रोग्राम ख्वाबों का सफर। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, इस रेडियो प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं वो गाने जो अक्षर अ से शुरू होता है, और वो भी ओल्ड इज गोल्ड मेलोडीज में 50s और 60s का सुपर डुपर हिट गाने आप सुनते हैं ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। और मैं बात करूंगा आज 1957 की एक खास बात। जी हाँ, 1957 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रानी रूपमती। इस फिल्म में उस समय को दर्शाया गया था जब अकबर हिंदुस्तान पर राज करते थे। उस समय की एक प्रेम कहानी रानी रूपमती और बाज बहादुर की, जिसका जिक्र आज के इस एपिसोड में होगा। तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम को। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे कहानी, वो भी प्रेम कहानी रानी रूपमती की, आपके लिए खास। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। खुश रहो और खुशियां बांटो।

जी हाँ, आ लौट के आजा मेरे मीत, ये बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे रानी रूपमती एल्बम से। जी हाँ, उस समय रानी रूपमती फिल्म का ये गाना बहुत पॉपुलर था और आज भी आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए, गीतकार भरत व्यास का लिखा, मुकेश की आवाज और एसएन त्रिपाठी का संगीत, 1957 का ये सुपर डुपर हिट गाना

यह भी सुना। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर ख्वाबों का सफर, जहां आप सुनते हैं वो बातें कुछ अनकही और कुछ दिल ने कहा। और मैं हूं आपका हम सफर सनी, रानी रूपमती की कहानी आज हम सुनाएंगे आपको। जी हाँ, एक सच्चे प्रेम कहानी का नाम है रानी रूपमती। और सुना है सच्चे प्रेम को पूरे मन से जीने और निभाने वाले बहुत कम ही लोग हुए हैं इस धरती पर। जब कभी प्रेम कहानियों की बात चलती है, तब आज भी मध्य प्रदेश स्थित मंडू के लोग रानी रूपमती और बाज बहादुर का नाम बड़े गर्व से लेते हैं। रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की प्रेम कहानी एक ऐतिहासिक धरोहर है। विद्यांचल पर्वत पर बसे मंडू की पहाड़ियों पर आज भी रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्यार के स्वर गूंजते हैं। जी हाँ, युद्ध, प्रेम, संगीत और कविता का अद्भुत मेल है इस जादुई प्रेम कहानी में। अब आगे प्रेम कहानी में कौन कौन सा रंग आता है वो कुछ देर में, लेकिन अभी आपको सुनाता हूँ एक सुपर ड्यूपर हिट गाना। अ अक्षर से शुरू होने वाला 1960s का ये गाना अभी आपके लिए। कहते हैं ना, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। जब प्रेम होता है तो आगे क्या होगा ये कौन सोचता है। जी हाँ, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत अभी आपके लिए। ये वक्त फिल्म का खूबसूरत गाना, जिसे आवाज दिया है आशा भोसले ने और साहिर लुधियानवी का कलम इस पर चला है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुणे की आवाज 107.8 एफएम, ख्वाबों का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी की आवाज 107.8 एफएम पर ख्वाबों का सफर, जहां आप सुनते हैं वो बातें कुछ अनकही और कुछ दिल ने कहा। और मैं हूं आपका हम सफर सनी। ख्वाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में, जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रेम कहानी रानी रूपमती की। रूपमती मालवा की गायिका थी और सुल्तान बाज बहादुर उनसे प्रेम करते थे। दरअसल रानी रूपमती का रूप वास्तव में उनके नाम के जैसा ही था और रूप सौंदर्य के साथ उनकी आवाज भी बड़ी सुरीली थी। वो अच्छा गाना

0: साथी थी। बाज बहादुर को यही उनकी अदाय भा गई।
1: बाज बहादुर मंडू के अंतिम शासक थे। रूपमती किसान पुत्री और गायिका थी।
0: उनकी आवाज के मूरित बाज बहादुर ने अपने दरबार में ले आए और दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। लेकिन जब रानी की इन खूबियों के बारे में शहंशाह अकबर को पता चला तो कहानी में एक नया मोड़ आया। अब ये अच्छा है या बुरा है इसके बारे में आप ही सोचिए, लेकिन अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ सिक्सटीज का एक सुपर डुपर गाना जो उस समय बहुत ही फेमस था। हर घर में ये गीत बजता था। वक्त फिल्म का गीत शाहिर लुधियानवी का लिखा, मन्नाड़े का गाया, म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि। जी हाँ, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ। ऐ मेरी ज़ोहद ज़मीन तुझे मालूम नहीं तू।

तुम्हें थे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराब रंग घोल दे। ओ सनम, ओ सनम।

0: मुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर, जहां आप सुनते वो बातें कुछ अनकही और कुछ दिल ने कहा। मैं हूं आपका हम सफर सनी, ख्वाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में, और हम बात कर रहे थे रानी रूपमती की एक प्रेम कहानी। भाई बहनों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया कि जो एक बहुत बड़ा बदलाव का कारण बना। राजा अकबर को जब रानी रूपमती के बारे में पता चला तो वो रूपमती पर मोहित हो गए। अब ये प्रेम कहानी परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। रूपमती को पाने की इच्छा से अकबर ने बाज बहादुर को एक पत्र भेजा, जिस पर लिखा था कि रानी रूपमती को दिल्ली के दरबार में भेज दो। इस पत्र को पढ़कर बाज बहादुर क्रोधित हो गए और उन्होंने अकबर को पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी रानी को उनके यहाँ भिजवा दे। अब ये तो ऐसे हुआ ना कि नहले को धैला। अपने पत्र का ऐसा जवाब पढ़कर अकबर आग बबूला हो गया। अहंकार और गुस्से से भरे अकबर ने अपने सिपाही सालार अधमखा से मालवा पर हमला करने को कहा। बहाद बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उसका मुकाबला किया। इसके बाद भीषण युद्ध हुआ और आदम खान ने बाज बहादुर को बंदी बना लिया। इसके बाद उसके सिपाही रानी रूपमती को लेने मंडू की ओर चल पड़े। लेकिन इस बात का जब रानी रूपमती को पता चला तो उन्होंने खुद को अकबर के हाथों में सौंपने से अपनी जान देना बेहतर समझा और रानी रूपमती हीरा निगल कर अपनी ई लीला समाप्त कर ली। जब रानी की मौत का समाचार अकबर को मिला तो उसे बहुत दुख हुआ। वो पछतावे की आग में जलने लगा। अब क्या करे जब रूप और मती दोनों नहीं रहे। जिस रंग रूप पर अकबर मोहित था और उसी जगह एक बेरंग अंधकार छा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रेम कहानी पर आधारित एक सुपर ड्यूपर हिट गाना जो शुरू होता है अ अक्षर से, आपको सुनाते हैं और फिर आगे की कहानी आगे सुनेंगे। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: आता है चंद्रमा रात आदि, रह न जाए तेरी मेरी बात आदि। क्या खूबसूरत गाना था उस समय का, और आज भी लगता है जैसे ही सुनते कोई प्रेम कहानी की बहुत ही सुंदर चित्रण इस गाने के अंदर हो रहा है। तो भरत व्यास का लिखा, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गीत, जिसे संगीत से सवारा था रामचंद्र और फिल्म थी नवरंग। जी हाँ, आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खबो खास सफर, जहाँ आप सुनते हैं वो बातें कुछ अनकही और कुछ दिल ने कहा। और मैं हूँ आपका हम सफर सनी खबो खास सफर इस रेडियो प्रोग्राम में। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेम कहानी रानी रूपमती की। अकबर को बहुत दुख हुआ और अब कर भी क्या सकते हैं, तो अकबर ने बाज बहादुर को कैद से आजाद कर दिया। तब बाज बहादुर ने कहा कि वो वापस अपनी राजधानी सहारनपुर जाना चाहते हैं, तो अकबर ने उसे सहारनपुर भेज दिया। सहारनपुर वापस आने पर बाज बहादुर ने रानी की मजार पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद तो अकबर को अपने किए पर काफी शर्मिंदगी हुई। अकबर पश्चाताप करने के लिए सन 1568 में सहारनपुर के समीप एक मकबरे का निर्माण कराया। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने लिखा, आसिफ ए सदीक रूपमती की समाधि पर शहीद ये वफा लिखवाया। अब क्या कहे क्या ना कहे, बात ही कुछ ऐसी थी जहां अकबर को कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जितना उन्होंने समझा इस प्रेम कहानी को, उसने उस भाव को उस समाधि पर और मकबरे पर ये शब्द लिखे। आइए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो और खुशियां बांटो।

कमर जलालाबादी का लिखा हावड़ा ब्रिज फिल्म का आशा भोसले का गाया हुआ ओपी नैयर का संगीत बद ये गीत 1858 का आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खा सफर, जहां आप सुनते हैं वो बातें कुछ अनकही और कुछ दिल ने कहा, और मैं हूं आपका हम सफर सनी खाबो का सफर। इस रेडियो प्रोग्राम में आइए आगे, जब अकबर ने मकबरा बनाया और रूपमती की समाधि, यहीं पर उनकी प्रेम कहानी समाप्त नहीं होती है। इसके बाद तो ये प्रेम कहानी लोगों के दिलों में बस गई, इसीलिए आज मंडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटक स्थल बन चुका है जो रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। यहाँ के खंडर और इमारतें हमें इतिहास के उस झरोखों का दर्शन कराते हैं जिसमें हम मंडू के विशाल समृद्ध विरासत से रूबरू होते हैं। रानी रूपमती का किला इनके प्यार का गवाह है। रानी रूपमती को राजा बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि रानी रूपमती के दिल की हर बात समझ जाते थे। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मंडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का किला है। कहते हैं कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी, इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती की इच्छा का ध्यान रखते हुए रानी रूपमती किले का निर्माण करवाया था। रानी रूपमती के किले से नर्मदा नदी नजर आती है। कहा जाता है कि रानी रूपमती हर रोज स्नान के बाद वहां पहुंचती और नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती को बेहद प्यार करते थे, शायद इसीलिए रानी रूपमती के महल तक पहुंचने से पहले राजा बाज बहादुर के महल को पार करना होता था। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती की रक्षा के लिए ये सब करते थे, इसीलिए शायद आज भी रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी का प्रतीक समझा जाता है। तो चलिए प्रेम कहानी में से ये एक अनूठा प्रेम कहानी जो हमने आपको सुनाया, और जाते जाते एक अनूठा गजल आपको सुनाते हैं प्रेम पर। जी हाँ, फयाज हाशमी का एक गजल आपको सुनाते हैं, राग यमन कल्याण पर आधारित। ये गजल बहुतों ने अपनी आवाज में इसे गाया है, जैसे कि भूपेन हजारिका, आशा भोसले, फरीदा खातून और लेटेस्ट जो सिंगर हैं अरिजीत सिंह ने भी इसे अपनी आवाज में गुनगुनाया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं ये गजल और आशा भोसले की आवाज में, और मेरा वादा है कि इस गजल को आप सुनकर खो जाएंगे, और जितनी बार सुनेंगे उतनी बार खो जाएंगे। आज जाने की जिद ना करो। इसी के साथ मुझे यानी आपका हम सफर सनी को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: Love,

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएटेड।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: इतिहास से, भूगोल से,
3: समाज से, संस्कार से,
2: आधुनिकता से और विचार से,
3: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
2: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
4: अतुल्य भारत।
3: चलिए आपको बताते हैं
2: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
3: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग,
2: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
0: क्या आपको पता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक अभियान चंद्रयान 1 ने दुनिया को सबसे पहले बताया कि चंद्रमा सूखा नहीं है। चांद पर पानी यानी लूनार वाटर खोजने का क्रेडिट

0: को ही दिया जाता है। इस मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। यह अगस्त 2009 तक अंतरिक्ष में सक्रिय रहा था। इस यान को पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के एक परिवर्तित संस्करण वाले रॉकेट की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था और इसके साथ ही भारत चांद पर यान भेजने वाला छठा देश बन गया।
1: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
2: पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
1: जय भारत।

0: न मैंने कुछ कहा
1: मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
0: के धूप में राह चांद दिन में रात हो गई।
1: चांद की रात है, सुने ये बात हो गई।
0: ओहो, ओहो, ओहो, ओहो, ओहो।

0: धड़कनों की बात धड़कने समझ गई।
1: न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड।

कई साल पहले की ये बात है। भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था,
1: नहीं
0: आ रहा था,
1: नहीं नहीं जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
3: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उसपे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: और छुट्टी बन के नजर फिर गई तो बंदूक पे हाथ से गिर गई।

0: हुआ।
1: खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया।
0: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा हैं।
2: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारे मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद घेऊया.
1: एक्यूप्रेशर देताली पात्र परिचय वरदान पंकज दृष्टि आकाश वेदांत यश और आदित्य लेखिका सुधापुरी.
2: चलो चलो आज नुक्कड़ नाटक खेलते हैं.
3: हाँ बड़ा मजा आएगा और अगर अच्छा गया तो हम अपनी सोसाइटी के लोगों को बुलाकर उन्हें दिखाएंगे.
2: ठीक है
4: मैं भागकर अपनी दादी की ढोलक ले आता हूँ.
5: ठीक है और मैं मंजीरे. बाकी हम सब तालियों की मधुर ताल बजा बजा कर बीच बीच में संगीत देंगे.
3: मतलब कैसे?
5: हम ऐसे ताली बजाएंगे ना, एक दो एक दो तीन.
6: ठीक है देखो हम सब उधर से ताली बजाते बजाते आएंगे और इधर आकर एक गोला बना लेंगे. फिर अपनी अपनी बात कहेंगे एक एक बार बीच में आकर.
5: दीदी उस दिन मैं कुछ कविताएं लिख रहा था, उन्हें भी इस्तेमाल कर लेंगे.
6: ठीक है हम सब कुछ कुछ लिख के लाते हैं और फिर सबके आइडिया को मिलाकर एक नुक्कड़ नाटक तैयार करते हैं.
2: दीदी इस बार हम अपने नाटक में एक डांस भी रखेंगे.
3: हाँ पर कोई लोक नृत्य.
7: ठीक है सबसे मजा तो गरबा में आता है. मुझे तो छोटी छोटी डंडियों के साथ डांस करने में बहुत मजा आता है.
4: इस डांस को गुजरात के नवरात्र में हर सोसाइटी या कॉलोनी में किया जाता है.
5: ओ तब तो पूरे पूरे पार्क इसके लिए सजे होते होंगे.
6: हाँ पता है कई पंडाल भी खास इसी नृत्य के लिए सजे होते हैं और हर उम्र के लोग मिल मिल के साथ डांस करते हैं. किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, बस जिस किसी को भी डांस आता है वो साथ में मिल जाता है.
3: तो हमारे राजस्थान में घूमर भी तो इसी तरह का नृत्य होता है.

0: हाँ कई समानताएं हैं। दोनों गुजरात का गरबा और डांडिया घूमर जैसे ही गोल गोल एक दायरे में होता है। दोनों ही खुशी के मौके पर परिवार में सब मिलकर करते हैं।
1: पर एक बात मुझे भी पता है।
2: क्या? गरबा तो ताली बजा बजा कर होता है और डांडिया छोटी छोटी डंडियों से।
1: चलो बात तय हुई, सब कल ही कुछ लिख के लाएंगे और हम उधर पार्क के उस कोने में रोज प्रैक्टिस किया करेंगे। पर आज का समय यूं ही वेस्ट नहीं करते, आओ हम तरह तरह की तालियां बजाने की प्रैक्टिस करेंगे।
2: हाँ दीदी, अलग अलग ट्यून निकाली जा सकती है तालियों की भी। देखो मैं दो बार हाथ से मारूंगा और दो बार टेबल पर, तो देखो कैसा मजेदार लगता है। ये सब करके तो मुझे सपने पिक्चर का वो गाना याद आ रहा है, आवार भवरे जो हौले हौले गाए।

0: मुझे भी ये गाना बहुत अच्छा लगता है। कितनी प्यारी तरह से बताया गया है कि हमारे प्रकृति में कितना मधुर संगीत भरा हुआ है।
1: बात फिर वही है ना, ध्यान।
2: आपका मतलब है जो हम योग में सीखते हैं?
1: और क्या, जब साइकिल चलानी सीख ली तो कोई भी मॉडल हो तो चला सकते हैं ना, क्यों?
3: या तैरना सीख लिया तो कोई भी तरण ताल हो, क्या फर्क पड़ता है?
4: या क्रिकेट आता हो तो कोई भी मैदान।
1: या बैडमिंटन आता हो

0: कोई भी बैडमिंटन कोर्ट
1: या पढ़ना आता हो तो कोई भी किताब।
2: अरे बस बस बस, लगे मत करी करने।
3: पर एक बात है, ये हमारा ऐसे ताली बजाना तो मुझे योग के एक्यूप्रेशर की याद दिलाता है।
4: हाँ मुझे भी।
2: तो कई बार लोग किसी भी ताल पर ताली बजाकर बगीचों में भजन वगैरह गाते नहीं दिखते क्या?
1: तो ये भी एक तरीका हुआ तनाव दूर करने का।
2: वो तो है ही, अभी ही देख लो, हम सब ने अलग अलग तरीके से तालियां बजाई हैं, तो कितनी ताजगी सी भरी हुई लग रही है।
5: हाँ बिल्कुल ठीक, सही है।
2: यानी अगर हम नुक्कड़ नाटक करते भी हैं, तो नाटक का नाटक और एक्यूप्रेशर का एक्यूप्रेशर होगा।
6: यानी एक पंथ दो काज।
7: जी नहीं, एक पंथ हजारों काज।
2: बच्चों ये हंसने की बात नहीं है, अगर हम कहें कि ताली बजाने से स्वास्थ्य को लाभ होता है तो यह मजाक लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल सही है और लाभदायक भी।
5: वो कैसे दीदी?
2: तुम सबने देखा होगा, आमतौर पर हम किसी को खुश करने या फिर प्रोत्साहित करने के लिए ताली बजाते हैं।
3: तो खुश और उत्साहित होने पर हम खुद भी तो ताली बजाते हैं।
6: बहुत से लोग गाते हुए भी ताली बजाते हैं।
2: बिल्कुल ठीक, ताली बजाने में मजा आता है, इसलिए बच्चे ताली बजाना पसंद करते हैं।
6: हाँ दीदी, मेरे पापा कहते हैं ताली बजाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।
2: वो इसलिए कि ताली बजाने से हाथों के सारे बिंदु दब जाते हैं और धीरे धीरे शरीर में व्याप्त रोगों का सुधार होता है।
7: मेरी नानी रोज कई देर तक ताली बजाकर भजन करती है, कहती है ताली बजाने से आपको हृदय रोग और अस्थमा संबंधित समस्याओं से राहत पाने में बहुत मदद मिलती है।
1: और मेरे दादाजी कहते हैं हृदय, लिवर, फेफड़ों आदि से जुड़ी नसों के लिए यह बहुत मददगार साबित होता है।
2: वो इसलिए कि अगर आप ताली बजाते हैं तो नसों को बेहतर कार्य करने में मदद मिलती है, इससे आप बेहतर और अधिक आराम महसूस करते हैं।
0: मेरे स्पोर्ट्स के सर बता रहे थे कि ताली बजाना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि यह आपके शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत करता है, जो किसी भी बीमारी से आपके शरीर की रक्षा करते हैं।
2: वैसे भी यह बच्चों में कौशल बढ़ाने और एकेडमिक प्रदर्शन को सुधारने में मदद तो करता ही है, मतलब ताली बजाना।
3: हमारी सोसाइटी में तो कुछ अंकल रोज ताली बजाते हैं। एक ने बताया था ताली बजाने से रक्त संचरण बढ़ता है और नसों तथा धमनियों से खराब कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ सारे अवरोध हट जाते हैं।
4: मैंने एक मैगजीन में भी पढ़ा था, अगर आप एक दिन 1500 बार ताली बजाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। और यही नहीं, हाथ से ताली बजाने से बच्चों का हस्त कौशल सुधरता है, जिससे उनकी लिखावट साफ हो सकती है, वे बेहतर लिख सकते हैं और स्पेलिंग संबंधित त्रुटियां भी कम होती है।
2: अरे मैंने तो खुद करके देखा है, हर रोज भोजन करने के बाद 1 घंटे के लिए ताली बजाएं, इससे आप गर्मी महसूस करेंगे और आपके हाथों और पैरों पर पसीना भी आ सकता है। बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डिप्रेशन, अस्थमा, जुखाम, गठिया, सिर दर्द, अनिद्रा और बालों का झड़ना आदि बीमारियों का इलाज ताली बजाने से किया जा सकता है।
7: तो क्यों साथियों, अब तो हम कह सकते हैं ना?
5: क्या?
7: वही, ताली बजाने से एक पंथ और हजारों काज होते हैं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया है, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद मिळवा.
2: धरती की पुकार पात्र परिचय उन्नति आदित्य पंकज आदित्य प्रकाश यश सैंडी वेदांत विनोद अंबर लेखिका सुधापुरी.
3: आज हम और भी जल्दी आ गए हैं.
4: सुबह सुबह का वातावरण कितना ठंडा और फ्रेश होता है ना.
5: मम्मी कहती है सुबह कितना भी जल्दी उठ जाओ पर दोपहर को बाहर नहीं जाने दूंगी.
3: आज क्या करने का इरादा है सबका, क्या खेले?
4: मैं तो उस पेड़ के नीचे कल सीखा हुआ सूर्य नमस्कार करता हूँ.
5: मैं तो जॉगिंग करूँगा.
3: मैं तो अपने स्कूल में सिखाया हुआ व्यायाम करता हूँ.
6: मैं तो यहाँ बैठकर प्राणायाम करूँगा.
7: ओहो, आज सब बड़े स्वास्थ्यवर्धक मूड में है.
3: हाँ ठीक तो है, मैं तो जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ.
5: मैं भी बस कल देर हो गई थी, टीवी पर पापा प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे और मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था.
4: कल तो सब तरफ मंगलयान की चर्चा हो रही थी
5: और स्वच्छता अभियान की.
4: क्यों ना हो, हमारे देश के लिए कितनी फक्र की बात है.
5: क्या स्वच्छता अभियान या मंगलयान?
3: अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मंगलयान और क्या.
6: स्वच्छता तो आम बात है, हम सबको रखनी ही चाहिए.
7: बात तो ठीक ही है, स्वच्छता के लिए अभियान चलाना पड़े ऐसी नौबत आ गई है.
3: पापा कह रहे थे भारत एशिया का पहला देश है जिसने बहुत कम पैसों में यानी कम खर्चे में मंगल ग्रह तक मंगलयान को भेजा है.
5: वो भी पहले ही शॉट में सफलता, वाह.
4: हाँ, कहते हैं ऑटो के प्रति किलोमीटर के किराए से कम में मंगलयान ने अपना सफर तय किया है. फक्र की तो बात है,
5: पूरे संसार में नाम हो रहा है.
4: बड़े बड़े उन्नत देश हमें देख कर हैरान हो रहे हैं.
5: और लगता है किन्हीं को तो शायद थोड़ी जलन भी.
3: पर क्या दीदी,
7: हम अपने ग्रह तक कब पहुँचेंगे?
6: मतलब
3: हम अपने ग्रह पर ही तो हैं.
5: अपनी धरती पर? हाँ, अपने प्यारे नीले ग्रह पर.
7: हाँ पर प्रदूषण फैलाकर हम कितनी तेजी से इसके विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी सोचा भी है? वो उधर कूड़े के ढेर पर और कूड़ा डालते हुए लोग और वो तालाब उस तरफ पार्क में सरकार ने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगवाया था, पर अब एक गंदा नाला बन गया है.
4: हाँ ये तो है.
5: अरे ये क्या, मम्मी कहती है हमने अपनी पवित्र नदियों तक नहीं छोड़ा तो और किसी की क्या बात की जाए.
4: मैंने कहीं पढ़ा था यमुना जिसके किनारे विश्व प्रसिद्ध ताज है आज एक गंदा नाला बन गई है.
7: आसपास की सब फैक्ट्री अपना वेस्ट इसमें डालती हैं, वो भी बिना ट्रीट किए.
5: ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई फिक्र ही नहीं है.
7: जैसे कि सब कुछ खत्म कर देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या रह जाएगा.
3: दीदी मुझे तो कोई भी देश इसकी फिक्र करता हुआ नहीं लगता.
6: कि वह किसकी मदद प्रगति कर रहा है?
3: बस अपने देश की फिक्र है. जैसे पूरी धरती खत्म हो गई तो ये अकेले रह पाएंगे क्या?
5: इट इज लाइक प्रॉफिट बिफोर पीपल.
4: ठीक कह रहे हो,
7: बल्कि आंकड़े तो यह दिखाते हैं कि जो देश जितने उन्नत हैं वे उतनी ही तीव्रता से गंध भी फैला रहे हैं धरती पर.
5: पापा कहते हैं चीन को ही देख लो, प्रगति की होड़ में संसार का नंबर वन तो न बन सका पर प्रदूषण फैलाने में जरूर नंबर वन बन गया.
7: तुम्हारा मतलब है वो उन्हें क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स?
4: कार्बन फुटप्रिंट्स मतलब?
5: मुझे पता है, मतलब किसी भी जनसंख्या द्वारा वातावरण में फैला हुए कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस.
3: ये कैसे होता है?
7: ये यातायात द्वारा या वनों के नाश द्वारा या अत्यधिक वस्तुओं के उत्पादन द्वारा या सड़क या बिल्डिंगों के निर्माण द्वारा भी हो सकता है.
4: ओहो, यानी मानव की गतिविधियों द्वारा हुआ प्रदूषण.
3: ठीक समझे, और फिर तो यही सिद्ध होता है कि जितनी तरक्की उतने ही कार्बन फुटप्रिंट.
5: तो क्या ये हमारा ही देश है जिसने स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर लिया है?
7: अरे नहीं, कई देश इसके लिए कार्यरत हैं, जापान में, जर्मनी में और कई देशों में नदियां साफ करने में बहुत मेहनत की जा रही है.
5: हम भी तो अपने देश में बहुत सीरियस हो रहे हैं इसे लेकर, सरकार बहुत काम कर रही है.
6: पर सरकार क्या कर रही है या देश में क्या हो रहा है इस पर बाद में बात करते, हम क्या कर सकते हैं इस पर सोचते हैं.
4: मैं बताऊँ, आज घर जाने से पहले इस पार्क के सारे कागज या रैपर आदि कूड़ेदान में फेंक कर जाएंगे.
5: गुड आइडिया, वैसे भी हम सबसे बाद में

0: आते हैं।
1: कल जब लोग आएंगे तो साफ पार्क देखकर हैरान हो जाएंगे।
2: यहाँ का सफाई कर्मचारी सोचेगा आसमान से कोई फरिश्ते उसकी मदद कर रहे हैं।
3: चलो फिर सोच क्या रहे हो जाओ शुरू। बल्कि मैं तो कहती हूँ सफाई कर्मचारी भैया से ही पूछ लेते हैं आपकी कैसे मदद कर सकते हैं।
4: एक और बात बताऊँ, आज ऐसा करके मतलब पार्क की सफाई करके हम योग व्यायाम जॉगिंग और ना जाने किन किन स्वास्थ्यवर्धक काम एक साथ कर लेंगे।
5: ऐसा करते हैं हम दो दो का ग्रुप बना लेते हैं।
6: हाँ, हमसे जो हो सके पहले वो करते हैं फिर किसी की मदद लेंगे।
2: मुझे पता है उधर एक गड्ढा बनाकर उसे कंपोस्ट पीट भी बनाया जा रहा है।
4: तो ठीक है, सब सूखे पत्ते फूल टहनियाँ आदि इसमें डाल देते हैं।
2: ठीक है जोड़िया मैं बनाता हूँ।
0: नहीं, हम खुद चुन लेंगे मॉनिटर साहब।

महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं।

0: नुकसान हमारा हो रहा है, इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप जाइए वहाँ वो कमरा है उधर गुस्सा करिए, आप जाइए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

योग दूति दागन जन हित बजाय बजाय मुरली अखंड मंडन महाराज मंडल मद निरत दिसोम दिसोम दिनिक दिनिक ताते या ताते तक तक तक दिख दिख बाजा सबीन मृदंग तप मुर संग मुरली मधुर ध्वनि कर ताल दुंदु बाजा सही

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, रोज की ये मुलाकात है, ऐसा लगता है कि हम और आप, हमारी जो जीवन है वो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जिंदगी अगर हम देखें तो कई बार बहुत सी ऐसी ऑब्स्टिकल्स लेकर आती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस लेकर आती है जो हमें लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं और हम उन्हें पार नहीं कर पाते। कई बार वो आसानी से हो जाती है, हमारा अपना मेंटल मेकअप ऐसा होता है, लेकिन कई बार वो बहुत हावी हो जाती है। तो ये जो आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बातचीत का सिलसिला जिसमें बहुत से हम सिचुएशंस को देखेंगे, जिंदगी के उन पड़ावों को देखेंगे जहां हम कहीं रुकने लग जाते हैं या उन्हें पार करते करते हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है, क्या मेरे सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि वो सिचुएशंस मुझ पर हावी ना हो? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: शिवानी, जिस तरह से अब लोग जुड़ते गए हैं अवेकनिंग के साथ और आप भी बहुत से लोगों के साथ मिलते गए हो, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? लोगों
1: का एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल, बिकॉज जहां जहां भी आप, जितने भी लोगों से मिलते, तो वो नए नए अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और कहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि परिवार वही होता है जहां हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है। और इतने सारे भाई बहने, लाखों की संख्या में कहें, जो रोज हमसे मिलते रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा, वो सोच में परिवर्तन, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़, जो आज तक परिवर्तन की बात सिर्फ सोच में थी, वो प्रैक्टिकल में आने लगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी मिलती गई। ज्ञान तो है, सभी के पास है, चाहते भी हैं परिवर्तन करना, लेकिन सिर्फ जो हिच आ रहा था वो कहाँ, कि मुझे मालूम है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जहां परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा, तो वो वाला भी जो स्टेप था वो क्रॉस हो गया, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज यू आर एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ फीलिंग, यू नो। बाहर तो जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन अंदर जो

0: प्रोसेस है आप उसको अप्लाई करते हो. एंड ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है क्योंकि जो परमात्मा ने डायरेक्ट नॉलेज दी तो नॉलेज तो बहुत सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन जब तक हम उसको यूज नहीं करते तो हमें उसका बेनिफिट नहीं पता चलता. तो जिन्होंने उसको यूज करना शुरू किया तो उनको वो बेनिफिट मल्टीफोल्ड मिला है. एक है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, नेचुरल है, परमात्मा की दी हुई बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, समझ भी आ जाते हैं. लेकिन वंडर तब क्रिएट होता जब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं. सो अगेन आई वुड से टेक इट बैक टू योर लाइफ टुमारो. यू नो नॉट दैट आप आधा घंटा टीवी देखते हैं, आप देखते देखते कहते हैं या इट्स वेरी गुड, इट सीम्स गुड. कई बातें लगती हैं नो बट इट्स नॉट पॉसिबल, कई बातें लगती हैं यस इट्स पॉसिबल. बट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल जस्ट गो एंड ट्राई इट आउट टुमारो. एंड ट्राई करने के बाद डिसाइड करें कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल. सिर्फ सुनने से नहीं डिसाइड करें, क्योंकि जहां इतने लोग वो पॉसिबल कर पाए हैं लाखों की संख्या में, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती. इट्स जस्ट दैट मेरा वो एक स्टेप बचा है एंड दैट इज गोइंग टुमारो एंड ट्राइंग दिस आउट. जब हम कहते हैं नॉट पॉसिबल या वेरी डिफिकल्ट, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को कह दिया लेट इट बी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इनके लिए ठीक है ये लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता मेरे ऑफिस में क्या होता है, या इनको क्या पता मेरे घर में कैसे लोग हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. तो उससे फिर हम अपनी ही प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं. सो व्हाटएवर वी शेयर इट्स फॉर एवरीवन, टेक इट बैक विद यू टुमारो. अपने ऑफिस में इसको लेकर जाएं, अपने घर पर लेकर जाएं, देन द मैजिक स्टार्ट्स. सो देन आई हैव बीन मीटिंग सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनके लिए फिर ये मैजिक हुआ है. वो फील करते हैं, ये उनका अनुभव है कि उनकी पूरी सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि परिवर्तन यही हुआ कि औरों को देखने की बजाय अपने को देख. बस वो एक ही तो स्टेप चाहिए था सिर्फ, लेकिन वो अंडरस्टैंड जब हो गया तो अपने को देखना शुरू किया, अपने को देखना शुरू किया तो अपने पर काम करना शुरू किया, और वो रियलाइज हुआ ये तो इजी है.
1: और सबसे बड़ी बात वो आहा मोमेंट ये थी कि ओ अच्छा मैं अपने आप को देख सकता हूँ. यू नो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत आपने आज जिस बात से हमने शुरू किया है कि बहुत से लोग हैं जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, अच्छा जरूर लगता है, लेकिन यही बात है कि मेरे लिए नहीं है. तो ये इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस आपको हम यही कहना चाहेंगे जो नए लोग जुड़े हैं, जो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी कि ये जो आने वाली जो श्रृंखला हमारी रहेगी जिस पर हम बातचीत करेंगे, आप ही की समस्याओं को लेने वाले हैं, आप ही की वो सिचुएशंस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए, या अगर ज्ञान नहीं भी जान पा रहे हैं आप, नहीं जानते थे, तो इस पूरी बातचीत के दौरान आप तक वो बात जरूर पहुंचेगी. बात हम यही करते हैं शिवानी, यहीं से शुरू करते हैं कि
0: सिचुएशंस
1: समझ में आ गई थी, जिंदगी समझ में आई, बहुत सी बातें कि मैं जिम्मेदार हूं अपने ऊपर, लेकिन अभी भी जब हम सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, और चैलेंजेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आने वाला दौर चाहे हम ग्लोबली भी देखें और चाहे पर्सनल लेवल पर भी देखें, तो बहुत तेजी से बदल रहा है, हम तैयार ही नहीं होते हैं. और मतलब हमने अपनी आपको बड़ी मुश्किल से एक सिचुएशन के लिए तैयार किया होता है, वो तीसरी सिचुएशन इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी होती है कि हम फिर घबराने शुरू हो जाते हैं. तो वो जो प्रिपरेशन है, क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी है या कैसे तैयारी करनी है?
0: वी कैन नॉट डिनाई कि चैलेंजेस आर गेटिंग बिगर डे बाय डे. कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके अपने अंदर शक्ति लाई होती है वो जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको क्रॉस करने के लिए, और अभी वो शक्ति उतनी भरी नहीं होती कि मेरे सामने एक उससे कई गुना बड़ी परिस्थिति खड़ी हो जाती है. लेट्स टेक अ लिटिल थिंग के व्हाट आर द सिचुएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा हमारा सिचुएशन पर होता है और सारा दिन माइंड में वो सिचुएशन की लिस्ट जैसे कि चलती ही जाती है. सिचुएशन जो हो चुकी है, परिस्थितियां जो वर्तमान समय मेरे जीवन में हैं, और कुछ परिस्थितियां जो मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूं जो मुझे लगता है हो जाएंगे,
1: हाँ, होने वाली
0: है, शायद मेरे साथ हो ना जाए, या जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है, तो अभी जॉब है, the job is very nicely there every day, but the thought, so I'm already creating the situation even though the situation is not there. So knowing how to face the situation, lekin what are the situations we are talking about, because hamare jeevan ke do बहुत इम्पोर्टेंट पहलू हैं. एक है मेरी पर्सनल और फैमिली लाइफ और दूसरी है मेरी वर्क लाइफ, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे एक बच्चे के लिए उसकी वो स्टूडेंट लाइफ है. इट्स दैट लाइफ. तो अगर हम अपनी वर्क लाइफ को देखें, नाउ यू आंसर, आई विल क्वेश्चन यू.

0: अगर हम अपने वर्क लाइफ कर्म उस क्षेत्र को देखें जहां हम रोज कार्य करने जाते हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस फॉर यू?
1: The top challenges or situations?
0: Situations, challenge, usko challenge bole, problem bole, situation bole, whatever. Because situation to wohi hai, aap usko kis roop se dekhne wale ho, wo depend karta hai.
1: See, agar aap mujhse personally puchte, matlab like you're asking me.
0: In general.
1: Generally, agar ek media person ke roop mein bhi, to ye kya, I'm a freelancer. So, recession ka ye daur, jahan already jinki fixed jobs hai, unko problem aane wali hai. So, I have this continuous thing that it's okay. Right now I have work, but what will happen next? Because how recession is going to hit, recession kaise hit karega media ko, hum nahi jante.
0: Hame nahi pata. And it's not necessary media, it's for everybody. Like, if you look at it even globally, shayad hi koi aisa desh hai abhi jo isse hit nahi hua hai. Shayad hi koi aisa level hai society mein jo isse hit nahi hua hai. Chahe aap, you're talking about the top level of society or you're talking absolutely the simple labor. Even the labor going for construction work today is stuck. You know? To aap ek pure spectrum ko cover kar rahe hai, jisme job, recession, for aarthik paristhiti.
1: Bilkul. Aur sabse badi baat, bahut se logon ke saath ye hai ki मैंने अपना कंफर्ट जोन उसके साथ कर लिया.
0: दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, जॉब इनसिक्योरिटी हो गई.
1: और फिर मेरा जॉब जहां है वो बहुत कुछ मेरे बॉस पर डिपेंड कर रहा है.
0: तो माय बॉस, माय कोलीग्स, दीज आर ऑल द चैलेंजेस. देन ट्रांसफरेबल जॉब, चेंज ऑफ योर होल फील्ड. कई बार आपको एक जगह से उठाकर एकदम दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं. सो दीज आर चैलेंजेस एट वर्क. चैलेंजेस एट होम.
1: Oh, you're asking me?
0: No, everyone.
1: Basically, बहुत ज्यादा सिचुएशन. अगर घर पे देखें तो बच्चों को क्या हम सही परवरिश दे
0: पाए. बिग थिंग.
1: मेजर.
0: इन मेनी प्रोग्राम्स वेर एवर आई आस्क्ड पीपल व्हाट्स योर टॉप कंसर्न, कहते हैं पेरेंटिंग. ऐसे पेरेंटिंग जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था, आज सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका
1: लगा लिया हमने ऊपर. क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इतनी सारी बातें हो रही होती हैं. पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है. बच्चे के करियर को लेकर फाइनेंशियल जो चीजें आएंगी वो एक बहुत प्रेशर लेके रखते हैं पेरेंट्स का. आजकल का जनरल जो ये है, मेरे लिए भी अगर मुझसे पूछो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने. देन रिलेशनशिप्स. सिंगल पेरेंट, इफ यू आर, यू नो, इवन इफ बोथ द पेरेंट्स आर देयर, कोई पेरेंट बाहर गया हुआ है विदेश में, मैक्सिमम लोगों के साथ जैसा हो रहा है. और वो सिंगल पेरेंटिंग में
0: डिवोर्स केस भी बहुत बढ़ रहा
1: है. मैक्सिमम ये चीजें जो होती जा रही
0: है, डिवोर्स है, सेपरेशन है, डेथ है,
1: और उसका पेन.
0: तो वो तो फिर मेरा रिस्पॉन्स है. लेकिन सिचुएशन जब मेरे सामने आके खड़ी होती है, एन अनटाइमली डेथ, अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड, किसी पेरेंट के लिए, या डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर. एक डेथ तो एक डेथ है ही, विच कम्स एज अ वेरी बिग सेटबैक, जिसमें हमें लगता है कि ये परिस्थिति, मतलब मेजोरिटी पीपल आज कहते हैं, स्पेशली इफ इट इज डेथ ऑफ अ चाइल्ड और अ स्पाउस, अब मेरे जीवन जीने का तो कोई पर्पस ही नहीं रहेगा. यू नो, सो दैट सिचुएशन इज नॉट अ सिचुएशन बट इट्स फॉर मेनी पीपल एंड ऑफ एवरीथिंग.
1: यस,
0: क्योंकि हम समझते कि वहां तो एंड हुआ ही हुआ उनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी दी एंड है. इसके बाद मेरे जीवन जीने का कोई पर्पस नहीं है, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है. यू नो द वे पीपल से टू देमसेल्व्स, हाउ कैन आई बी हैप्पी, यू नो, आई एम और आई एम नॉट बी हैप्पी, तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, मैं खुश हो ही कैसे सकता हूं, मुझे खुश रहने. सो सिचुएशन, सो डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप क्राइसिस, पेरेंटिंग, कई बार चेंज ऑफ सिटी. आपको, आप बहुत समय से यू नो एक जगह पर सेट हैं, एक कंट्री में सेट हैं, या आप एक सिटी में सेट हैं, एंड सडनली
1: यू हैव टू गो,
0: पीपल आर नॉट एबल टू.
1: और वो एकदम से क्या होता है, सिचुएशन आती है तब तो आप हेड ऑन फेस करते हैं, लेकिन जो उसके बाद का डिप्रेशन स्टीप इन करता है, ये मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है.
0: तो सिचुएशन उस टाइम नहीं है ना सिर्फ, वो एक सिचुएशन अब
1: लंबा,
0: लंबा प्रोसेस है. तो अब अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें, वर्क पे हमने देखा फाइनेंशियल, जॉब, बॉस, रिलेशनशिप्स, घर पर हमने देखा अगेन रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, डेथ, डिवोर्स, शिफ्टिंग, व्हाटएवर. इन सभी परिस्थितियों में, अब आप ध्यान से आंसर करना, आपके आंसर पर सब कुछ डिपेंडेंट है. इन सभी परिस्थितियों में कौन सी एक चीज कॉमन है?
1: मैं
0: नहीं, मैं तो कॉमन है. क्या हो रहा है इस हर परिस्थिति में जो कॉमन है, हर परिस्थिति में है?
1: चेंज.
0: चेंज, सी, दैट्स ऑल. दैट्स ऑल.

0: परिवर्तन, परिवर्तन. एंड लाइक यू सेड, वी आर नॉट रेडी फॉर चेंज, क्योंकि हमारा एक कम्फर्ट
1: जोन
0: है. हर परिस्थिति, एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चेंज है. यू नो, द मिनट आई जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, चेंज, चाहे चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज चाहे फॉर मी इट कुड बी कि यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन. मैं आपको जो जानती थी इतने इतने साल, यू नो मेनी पीपल विल से अब तो आप वैसे रहे हैं, तो चेंज, चेंज. या आप मेरे साथ इतने साल थे, आज सडनली आप मेरे साथ नहीं है, चेंज. मेरा एक जीवन जीने की एक शैली थी, एक लाइफस्टाइल था, सडनली मुझे वो क्रैश हो गया, चेंज. सडनली मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, चेंज. सो एवरी स्टेप जो चीज मुझे हिट कर रही है वो है चेंज. एंड समवेयर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर चेंज बिकॉज वी आर समहाउ, क्योंकि हमने अपने आप को उस दायरे के अंदर, चाहे वो मुश्किल वाला भी दायरा था, चाहे वो दर्द वाला भी दायरा था, लेकिन हम एडजस्ट कर चुके थे. यू नो, हम एडजस्ट कर चुके थे और हमें उसके साथ जीने की एक आदत पड़ गई थी. इट वॉज माई हैबिट, इट वॉज हैबिचुअल. वेदर इट वॉज प्लेजेंट और नो वी डोंट नो, बट इट वॉज हैबिचुअल. लेकिन जहां वो चेंज आया तो इट हैज हिट मी. अब जैसे ही चेंज आएगा, लेट्स लुक एट योर सेल्फ, यू आर स्टैंडिंग दैट साइड.
1: लेकिन चेंज के लिए एक और चीज, जो अगर आप चेंज की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बैड. यू नो लाइक इज दिस चेंज फॉर गुड और इज दिस चेंज फॉर बैड.
0: चेंज इज चेंज. हाउ गुड और बैड आई विल मेक इट.
1: या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
0: जो यहां से चेंज आया, सी चेंज तो सिचुएशन से आ रहा है ना. चेंज बाहर है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर या आपकी पोजिशन. चेंज बाहर से आ रहा है. गुड और बैड किस पे डिपेंड करता?
1: मुझ पे.
0: एट एवरी स्टेप जहां आपके सामने कुछ हिट करता है, इफ यू कैन जस्ट टेक आउट वन मिनट एंड जस्ट स्टॉप एंड सी, इस समय क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. हमेशा कुछ एक बातें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में है, कुछ एक चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, एनीथिंग. माई कंट्रोल
1: नहीं.
0: वॉट इज इन माई कंट्रोल? चेक. फाइनेंशियल क्राइसिस, माई कंट्रोल? जॉब चला गया आज, माई कंट्रोल? नो. तो मेजोरिटी, 95% से ज्यादा परिस्थितियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कंफर्टेबल ही हो जाते हैं ना, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं.
1: उसको हमें पता भी नहीं चलता कि वो चेंज हुआ है.
0: एक ट्रैफिक जैम में भी अटकना एक परिस्थिति आज, है ना. आप कहते हैं इतनी मुश्किल, इतने हाईवेज बने बने, जब तक बने तब तक वी स्टिल अगेन स्टक. सो अगेन यू आर स्टक इन दैट. बट इन योर कंट्रोल? Not in your control. What is in my control in every case? Kya control mein hai aur kya control mein nahi hai?
1: Even my thought process, see, I would have said,
0: yes.
1: Lekin wo bhi to control mein nahi hota.
0: हाँ.
1: क्योंकि वो जब हमें टेक ओवर कर जाता है, जैसे स्पेशली अगर किसी का जॉब छूटा. आई नो somebody जिसको सडनली शी वॉज टोल्ड कि आपको 6 महीने पहले उन्हें टॉप का लीडर बनाया गया, मतलब कंट्री हेड, और विद इन 6 मंथ्स उन्हें बोला गया कि नहीं, यू नॉट डूइंग योर वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा. उसका सब कुछ उनका उस पर डिपेंड कर रहा था. वो डिप्रेशन सीपिन ऐसे करता है.
0: नहीं तो एग्जैक्टली वही हुआ ना. ये सब कुछ आपका क्रैश कर गया. सपोज मेरे आसपास सब कुछ क्रैश कर गया. लेट मी लुक एट द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हिट मी. एंड वो ये है कि एक पल में मेरा सब कुछ जो मैं समझती हूँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार भी, लेट से एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया. अगेन नॉट इन माई कंट्रोल. बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इवन नाउ?
1: मैं उसको कैसे लेती हूँ सिचुएशन?
0: बिकॉज फाइनली, लेकिन हम क्यों नहीं उस तरफ देख पाते कि व्हाट इज इन माय कंट्रोल? क्योंकि हमारा सारा अटेंशन उन बातों के ऊपर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, सब लोग लेकिन आपस में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं? सारा जो एनर्जी लग रही है वो किस पर है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड. प्रॉब्लम ही ऐसे, सिचुएशन ही ऐसे. टॉक अबाउट सोल्यूशन. अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, हो गया, लेकिन हम डिप्रेशन में चले गए. कौन सा लॉस ज्यादा बड़ा?
1: हमारा.
0: ये किसने क्रिएट किया था?
1: हमने खुद.
0: ठीक है, दुनिया में जिन लोगों ने जो किया सो किया, जिसकी वजह से मेरा सारा धन चला गया, लेट्स से वर्स्ट केस कंडीशन. लेकिन ये जो लॉस किया, ये किसने क्रिएट किया? तो एक लॉस तो हुआ, ठीक है, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो ये लॉस हुआ कि आई गो इन टू डिप्रेशन, कल को इफ आई गो

0: डिप्रेशन सपोज इट गेट्स वर्स एंड मुझे हाइपरटेंशन या यू नो हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ, अब ये लॉस किसने किया? मैंने किया. अगर मैं अपने दर्द से बाहर नहीं निकल के आ पाती और मैं घर के लोगों के साथ उस बात को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन या झगड़े और वो सब करते रहूं और हम आपस में दूर हो जाएं, ये लॉस किसने क्रिएट किया? अब ये सब लॉस के सामने वो आपका फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा बैठता है?
1: और इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट हैपेंस कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा लॉस होता है तो मैं ही चाहती हूँ कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है. मेरे को जो हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू मी.
0: फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. इफ आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग मी एंड मे बी यू आर इन योर ओन पेन. You see, so for me to expect कि आप मुझे समझो, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही. तो इसलिए हर एक परिस्थिति में फिर भी yes the situation is very big. Question is कि अभी भी मेरे control में क्या है, मैं सारी अपनी attention उस पर focus कर दूं. It's like मेरी एक चीज तो चली गई लेकिन तीन चीजें तो बची है ना. लेकिन क्योंकि मैं वो तीन चीजों का ध्यान न रख कर,
1: कि वो तो है ही.
0: हाँ, फॉर ग्रांटेड उनको लगती हूँ. आज मेरा पैसा चला गया लेकिन मेरी मन की स्थिति अभी भी ठीक है, मेरा तन अभी भी ठीक है, मेरा परिवार अभी भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो गया गया. साथ में कितना और नुकसान हुआ. क्यों नुकसान हुआ? सिर्फ क्योंकि आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन देयर. सिर्फ बिकॉज आई वॉज मोर. क्यों हुआ? क्यों हुआ? नॉट इवन लुकिंग एट द सोल्यूशन, ओनली लुकिंग एंड चर्निंग ओवर द प्रॉब्लम. सोल्यूशन हर परिस्थिति में है. ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आपके सामने, कोई चैलेंज ही नहीं आने वाला जिसमें सोल्यूशन नहीं है. यस, इट जस्ट डिपेंड्स मुझे कितना टाइम लग जाता है उस सोल्यूशन तक पहुंचने में. और सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? जब माइंड थोड़ा सा नहीं तो मैं अपने दर्द में कौन सा सोल्यूशन दिखाई देगा? दर्द में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी. और जितना दर्द बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम इतनी भी होगी ना, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी. और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी उतना हम सोल्यूशन से दूर होते जाएंगे. परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिलता है राजयोग के द्वारा, उसका पूरा पर्पज ही ये है कि जैसे ही आप अटेंशन आपके कंट्रोल में जो है, एंड दैट्स ओनली वन थिंग, माय स्टेट ऑफ बीइंग, उस पर जैसे ही जाता है तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा देखना शुरू करते हैं क्योंकि आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हैं. लेकिन अगर मैं कमजोर हो जाऊं तो मेरे सामने, आफ्टर ऑल इट्स अ फाइट बिटवीन टू ना, प्रॉब्लम एंड मी, हम दोनों का आपस का संघर्ष है, ज्यादा शक्तिशाली कौन. लेकिन क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो जाती हूं, इतनी दर्द में चली जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं तो उसको देख के ही बैठ जाती हूँ.
1: इनफैक्ट यहाँ से मुझे भी लगने लग गया कि हमें प्रॉब्लम कहना ही नहीं चाहिए. द वे यू सेड इट्स ओनली अ चेंज,
0: इट्स ओनली अ चेंज, इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ चैलेंज. उसको चैलेंज आप बोलो. बहुत बड़ी बात आ गई आपके सामने, आप उसको चैलेंज करके बोलो. प्रॉब्लम करके बोलते ही तो वो प्रॉब्लम ही एक लगने लगती है.
1: एक मुसीबत छोड़ना हजारों मुसीबत,
0: यू नो, हमारी वोकैबुलरी भी ऐसे आ गई. तो चेंज आएगा ही. देर इज ओनली वन थिंग, आई हैड रेड दिस समवेयर, वेरी ब्यूटिफुल, देर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज चेंज. सो इट्स सो ब्यूटिफुल. जब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि एक चीज है जो कभी रुकने वाली नहीं है, वो है परिवर्तन. अब उसको मैं संघर्ष करूं उसके साथ, इट्स नो यूज. जस्ट बिकॉज आई थॉट जैसे चल रहा था वैसे बहुत अच्छा था, ऐसा ही क्यों नहीं चलता रहता ये? व्हाई डज दिस हैव टू चेंज? तो वो मेरे बोलने से या मेरे सोचने से रुकने वाला नहीं है. बट जैसे ही चेंज सामने आएगा, नाउ व्हाट डज इट डिमांड फ्रॉम यू? क्या चाहिए आपको?
1: मैं भी तो चेंज होनी चाहिए.
0: रिस्पॉन्स. एवरी चेंज, दिस चेंज कम्स फ्रॉम यू. Right?
1: अच्छा, एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी, जैसे आपने कहा कि दिस वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ दैट इज चेंज, एंड उसके आगे ही था चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लोगों के लिए. तो इस पर हम एक्चुअली पूरी बातचीत करना चाहेंगे.
0: चेंज व्हेन विल इट बी फॉर गुड? जब उसको आप प्रॉब्लम न देखकर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो. कि इस, क्योंकि वही तो परमात्मा हमें रोज बताते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत बहुत अच्छा. अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ ये है कि मुझे इस सेंटेंस को, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, तो परमात्मा अगर ये स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द ट्रूथ.

0: That is the faith. Now, if I reject the statement, I say, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा, then it's over for me. मैं उसको उस दृष्टिकोण से लूंगी ही नहीं. लेकिन जहां ये फेथ है कि परमात्मा ने ये कहा है, और ये सेंटेंस ऐसा है जो मुझे लगता है हर एक को पता है. यू गो एनीवेयर, इट्स रिटन एवरीवेयर कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द गुड. लेकिन इसको बिलीव कौन कर रहा?
1: कोई नहीं कर पा रहा है.
0: इसमें फेथ कितना है कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा. तो लेकिन परमात्मा के महावाक्य है, अगर मैं उस समय जिस समय मेरे सामने वो चैलेंज आता, मैं अगर वो महावाक्य को अपनी स्मृति में ले आऊं और उसके बेसिस पे अब रिस्पांस क्रिएट करूं, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम ना लगकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि अब इसमें मुझे क्या करना है. वी अग्री, एब्सोल्युटली अग्री कि जो भी सिचुएशन आज आ रही है ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, कल को और बड़ी भी आ सकती है. लेकिन डज दैट मीन कि आई विल कंटिन्यू टू लिव माय लाइफ इन पेन, और इज देयर अनदर चॉइस?
1: कंटिन्यूस डर. सुधा शिवानी, आज की जो बातचीत हमने की है, सिचुएशंस हमारे सामने वो हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की हैं, और कहीं न कहीं एक ये परिवर्तन कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत, ये सरदर्द ना होकर एक चेंज, एक परिवर्तन है. आगे हम जरूर अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, कैसे इस चैलेंज में हमें देखना है कि ये शुभ के लिए कैसे है, क्योंकि परमात्मा का महावाक्य है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खरा और सच्चा है. सुधा शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: बिल्कुल, आज जहां शुरुआत हमने की थी, सुधा शिवानी ने यही हमसे रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था कि हम इस जो पूरी बात हो रही है ये सिर्फ बात के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास जरूर करें. आज ही से, कल का भी क्यों इंतजार करें, आज ही से जो सिचुएशन अभी मुझे तंग कर रही है या जो सिचुएशन कल मेरे सामने आ सकती है, मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू हो सकता है मेरे बॉस के साथ जहां ये तय होना हो कि मैं किस तरफ जाऊंगा, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो सकती है जो डिसीजन लेना हो, अगर हम उसे एक चेंज के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में एक्सेप्ट कर ले. गुड और बैड हम बाद में देखेंगे, आने वाले एपिसोड जो है उसमें हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें गुडनेस क्या है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, और उसको हमारा रिस्पांस क्या होगा, उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें भी जानेंगे. लेकिन आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें. इम्प्लीमेंट करके जो आप अनुभव करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें. उसके अलावा अगर आप के पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं. अगर आप नजदीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0998-73-666-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अब एक नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जीवन में कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुसीबत जिसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है, एक परिवर्तन है. इस थॉट को अपने साथ रखें, आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। कहते हैं कि मनुष्य आदतें जब बनाता है तो वो अपनी सहूलियत के लिए बनाता है और कभी भी उसे बदलने की हिम्मत या क्षमता रखता है। लेकिन आज के इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, उसमें ये भी बात नजर आ रही है कि कहीं न कहीं हम अपनी उन्हीं आदतों के अधीन होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं आदतों ने हमें ओवरटेक कर लिया है, ओवरपावर कर लिया है और हम खुद को, स्वयं को उसके आगे हारा हुआ मानते हैं और फिर उसकी स्वाधीनता स्वीकार करके खुद उसके अधीन हो जाते हैं या फिर कहें तो उसके आदि हो जाते हैं। लेकिन हमारी इस श्रृंखला में हमारी ये कोशिश है कि हम उन कारणों को जाने कि क्या ऐसा हो जाता है कि हमारी वो आदतें हम पर हावी हो जाती हैं और क्या हम उन आदतों को छोड़कर नई आदतें यानी पॉजिटिव जो हैबिट्स हैं उन्हें अपना सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ खास मुंबई से हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हर बार की तरह हमारी हम सफर है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत से हमने ऐसी आदतों के बारे में बात की है इस पूरी श्रृंखला में। अभी तक हमने बहुत मोटी मोटी उन व्यसनों की बात की, उन एडिक्शंस की बात की जिनसे आज हर व्यक्ति जूझता नजर आता है और कई बार हमने ये भी देखा कि एक्सेप्ट ही कर लेते हैं कि यही सच्चाई है। ना सिर्फ अगर हम नहीं जूझ रहे तो हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा है जो इस आदत का शिकार होता है, चाहे वो स्मोकिंग की बात की थी हमने, चाहे वो हमने ड्रिंक्स की बात की थी, इवन ड्रग्स तक की भी बात हम कर चुके हैं। जो बड़ी बात सामने आई थी वो यही थी कि कहीं ना कहीं डिसीजन हमने अपने हाथ से छोड़कर और उसके आदि बनते जा रहे हैं। पीयर प्रेशर भी उसमें बहुत बड़ा कारण था। हमारे जो अपने हैं वो भी सहायता कर सकते हैं इसे छोड़ने के लिए। स्मोकिंग की बात की थी, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे पर्यावरण पे थे। निकोटीन या तंबाकू या स्मोकिंग का जो एक और एस्पेक्ट है वो है गुटखा। 2 रुपए का वो पाउच गुटखा हर पॉकेट में हर व्यक्ति के पास मिल जाता है, किसी भी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स होते हैं। गुटखा को हम क्यों एडिक्शन नहीं मानते हैं?
1: ऐसे तो सबसे बड़ा एडिक्शन है और इनफैक्ट ट्रेजेडी जो है कि भी भारत में पहले भी था, अलग अलग रूप से तो हम स्मोक करते थे लेकिन मेजर जो है वो वेस्टर्न कल्चर हमारे पास आया है कि हम ज्यादा वो जैसे स्मोकिंग करते थे ऐसे करने लगे। लेकिन देखो विदेशों में कोई भी गुटखा नहीं खाता है, नो च्यूइंग टोबेको इज ऑलमोस्ट जीरो इन अदर कंट्रीज, तो यही बताता है कि हम कितने ज्यादा आदि हुए। और गुटखा है वो उतना ही डेंजरस है
0: यहाँ, क्योंकि ये मिथ्स में बहुत रहते हैं हम लोग कि गुटखा तो जो है वो स्मोक तो नहीं कर रहा या ड्रिंक तो नहीं कर रहा, गुटखा ही तो खा रहा हूँ। लेकिन क्या है, क्या होता है जब ये तंबाकू मुंह में जाता है?
1: वो भी तंबाकू ही है तो उसमें भी निकोटीन है, वो जो सारी है एक्सेप्ट द कोल टार, कार्बन मोनोक्साइड, वो जो चीजें हैं वो गुटखे में नहीं है। और दूसरी हार्मफुल इफेक्ट है गुटखे में कि जब उसे चबाते हैं तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है और व्यक्ति मुंह को खोल नहीं पाता है। शुरू में तो उसे खोलने में दिक्कत होती है, फिर शायद 3-4 इंच खोल पाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि जो एक उंगली भी अंदर डाल नहीं सकते, यहां तक कि खाना भी ऐसे खाते कि भी चम्मच में लेंगे, मुंह में डालेंगे, उल्टा करेंगे, फिर सीधा करके फिर निकालनी पड़ती है। आप अगर उनकी कंडीशन देखो तो आपको सचमुच एक सिंपथी होगी।
0: बिल्कुल, मतलब इट्स एक्टिंग हॉरिफाइंग एस्पेक्ट अगर जिंदगी का देखें तो। सिस्टर शिवानी, ऐसा क्या है, मतलब हम इसको स्वीकारते ही नहीं। देखिए, हमने स्मोकिंग की बात की थी तो चलिए हम फिर भी मान लेते हैं, घर वाले भी मान लेते हैं, हम खुद भी कहीं कहीं अगर मैं स्मोक करती हूँ मुझे पता होता है कि हाँ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इवन ड्रग्स की बात की थी, ड्रिंक्स के मामले में भी हमें मालूम होता है। गुटखा को हमने इतना आसान क्यों मान लिया है? इवन वुमेन भी जो स्मोकिंग और ड्रिंक्स के बारे में फिर भी दो बार सोचते हैं, वो भी गुटखे के 3 दाने लेने में कोई और उसे फांकने में कोई अपनी परेशानी का सबब नहीं मानती हैं। क्यों इसे हम एक एडिक्शन के रूप में नहीं देखते हैं?
2: एडिक्शन नहीं भी देखें लेकिन हार्मफुल तो है ही ना, तो एक हार्मफुल पदार्थ हम अपने अंदर क्यों डाल रहे हैं? कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट में वो जो परखने की शक्ति है राइट और रॉन्ग, वो या तो कम हो चुकी है या रॉन्ग पता होने के बावजूद भी जैसे कि हम बहुत बेपरवाह हो चुके हैं अपने बारे में। हम क्या नहीं जानते, हम सब कुछ तो जानते हैं। हमने नॉनवेज की बात की थी, हमने ये सारी जो बातें की हमको सब पता है कि इसके क्या नुकसान है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने अंदर डाल रहे हैं। वैल्यू फॉर माई ओन लाइफ, आई डू नॉट वैल्यू माई ओन लाइफ, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू न जानने के कारण हम सोचते हैं जितना है उसको कम से कम इस चीजों से इंजॉय करें। ये हमारे स्टिम्यूल स्टिमुलेंट्स हैं इंजॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, तो उसका अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा उस नुकसान की तरफ नहीं सोच रहे, क्योंकि जीवन में खुशी चाहिए.
0: और कहीं ना कहीं हम इस कगार पर पहुंच गए हैं कि खुद को ही नकार दिया.
2: हाँ, बिल्कुल वैल्यू नहीं है ना. हाँ, अपने जीवन की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं है. जब हम कहते हैं अपने लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते, कहते 10 मिनट अपने लिए निकालो, टाइम नहीं है. लैक ऑफ वैल्यू फॉर द सेल्फ, बिल्कुल अपने जीवन की इम्पोर्टेंस नहीं है. तभी तो अपने शरीर की भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके अंदर ये सारा डाल रहे हैं. जैसे एक अज्ञान की नींद में सोए हैं और चलते जा रहे हैं.
1: श्रीमानी बेन, एडिक्शन तो है ही है.
2: एडिक्शन
1: की डेफिनेशन भी हम देखे तो अगर आपने एक मास तक गुटखा खाया, फिर देखो 2 दिन नहीं खाओ, इमीडिएट इफेक्ट होते हैं.
2: नहीं, लेकिन शुरू भी कर रहे हैं या विमेन भी ले रहे हैं, तो क्यों हम शुरू भी करते हैं उस तरह की चीज को.
1: एंड हाउ एक्सपेंसिव इट इज, कभी हम ये नहीं सोचते. हम तो सोचते वो पुड़िया 1 रुपये की या 2 रुपये की मिलती होगी, लेकिन अगर किलो का हिसाब किया जाए तो शायद 3-4 हजार रुपये किलो है. आज गरीब लोग भी खाते हैं, जो शायद बच्चों को बादाम नहीं खिलाएंगे, है ना, अच्छे से दूध नहीं पिलाएंगे, परंतु गुटखा आराम से खा रहे हैं.
0: तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस है जो गुटखे का, अगेन आपके पास आते हैं सिस्टर शिवानी, कि जब हमने बात की स्पिरिचुअलिटी की, जब हमने बात की अवेयरनेस की फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड इटसेल्फ, यू नो, 10-11 साल में जहां ये लतें भी पड़ रही होती हैं, इवन स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी गुटखा जो है वो मुझे लगता है माँ बाप भी शायद उसको परेशान नहीं होते उसको देख के कि गुटखा खा रहे हैं. तो यहाँ ये जो जब अवेयरनेस अगर शुरू में ही क्रिएट हो जाए, क्योंकि हम बात हर बार प्रिवेंशन की भी करते आ रहे हैं, सो हाउ माई अवेयरनेस विल हेल्प मी नॉट टू गेट इनटू दिस होल हैबिट.
2: टोटली, इट विल नॉट टेक मी टूवर्ड्स इट एट ऑल. अगर बचपन से ही पेरेंट्स ने वो अपब्रिंगिंग में वो बात सिखाई होगी, उसके नुकसान बताए होंगे और खुद उस जीवन शैली को फॉलो कर रहे होंगे, तो बच्चा भले उसकी क्लास में सारे ले रहे हो वो चीज को, उसके बिलीफ सिस्टम में इतना इनग्रेन्ड होगा कि वो उस तरफ जाएगा ही नहीं. दैट इज फॉर श्योर. पीयर प्रेशर इज एन एक्सक्यूज, इट्स अ रियल एक्सक्यूज कि नहीं पीयर प्रेशर में तो आप सब कुछ कर लेते हैं. कितने बच्चे हैं जो बावजूद सारे पीयर प्रेशर के नहीं करते हैं ना, तो व्हाट इज इट दैट दे हैव, व्हाट इज इट दैट दे हैव विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. बहुत स्ट्रांग अंदर विल पावर एंड बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन परिवार में, जो पूरा वैल्यू सिस्टम जो परिवार में डला है, दे विल नॉट गो टूवर्ड्स दैट.
1: क्या होता है शिवानी बेनी, जो कहा ना कि आध्यात्मिकता से हमें अपनी एक अलग से पहचान मिलती है, अपनी आइडेंटिटी होती है कि आई एम यूनिक, नो आई एम स्पिरिचुअल. इसके लिए भले 99% ले रहे हैं तो भी वो बच्चा जो स्पिरिचुअल बातों को अपनाए उसको टच भी नहीं करेगा.
0: डेफिनेटली, दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस कि आपकी अपनी आइडेंटिटी अगर पहले से ही है. यहाँ एक हम कहते हैं, हर बार बात ही कर रहे हैं, बार बार हर एडिक्शन के ऊपर जब बच्चों की बात आती है, फैमिली फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है. कितने दिनों से हम जब बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या आज है, एक पेरेंट लेता है, खासकर अगर हम देखें फादर या मदर भी हो सकते हैं, वो स्मोकिंग में है, ड्रिंक्स में है, शाम को एक पैक ड्रिंक का जरूर लेंगे ही लेंगे, आदत है उनकी, कोई बात नहीं, ये गुटखा है वहां पैकेट पड़ा रहता है. ये माँ जो है वो चाहती है कि ना हो, किसी तरह से क्या हो, फादर को नहीं समझाया जा सकता, फादर नहीं समझ पा रहा. क्या एज वन सिंगल पेरेंट कैन ऑल्सो हेल्प द चाइल्ड, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू आज.

0: इस दौर में, बिकॉज हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, हम पहले भी रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर चुके हैं, कहीं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर चल रहे हैं, और अगेन मेरे लिए वैल्यू अलग है, पूरे परिवार के लिए वैल्यू अलग है। तो आज जब बच्चे को वो गुटखा दिख रहा है ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ, उसको उठा के वो डालने की कोशिश करेगा, क्या एक सिंगल पेरेंट उस बच्चे को मोटिवेट कर सकती है उससे परे रहने के लिए?
1: Absolutely, I think that is possible. क्योंकि आप एक source of inspiration तो बन सकते हैं, एक role model आप बनकर उल्टा और ही शायद बच्चे के अंदर आप वो प्रेरणा ला सकते हैं कि you know see what is the harmful effect.
0: जब हम यहाँ पे conflict ये आ जाता है कि अगर वो समझाएगी कि father तुम्हारे गलत कर रहे हैं, so उनको ये लगेगा कि क्या मैं father के against तो नहीं भड़का रही। ये एक बहुत बड़ी problem माओं के सामने जो आज की जो generation में है वो आ रही है कि जब मैं अपने बच्चों को ये बताऊंगी कि देखिए father drink करते हैं, स्मोक करते हैं या गुटखा लेते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट है कि कहीं मैं उनके अगेंस्ट तो नहीं कर रही हूँ। सो हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस?
2: जनरली तो ये नहीं होता है, इन जनरल देयर मे बी रेयर, कुछ होंगे ऐसे 1-2%, परंतु अधिकतर तो माँ तो एक्सट्रीम अगेंस्ट होती है। मैंने कही एक डॉक्टर को मैं पहचानता हूँ, वो थोड़ा ही बहुत थोड़ा पीते और कभी उसने ऊंची आवाज से भी नहीं बोला, इतना एक आध पैक लेके कभी ऊंची आवाज से भी उसने नहीं बोला, बिल्कुल एकदम नॉर्मल होते हैं। लेकिन उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आता है कि उसकी पिटाई कर देते हैं। उस स्टेज में एक पैक भी लिया है तो भी उसकी पिटाई कर देंगे। मतलब महिलाएं तो एकदम अगेंस्ट है।
0: नहीं, लेकिन अगर आज के सर्कमस्टांसेस में ज्यादातर देखें, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, हस्बैंड्स पार्टीज में पी ही रहे हैं, रात को भी शाम को भी कई लोगों ने अपनी दिनचर्या बना रखी है कि लेते ही है, ऐसे में ये जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट की बात की कि लेडी के सामने ये कॉन्फ्लिक्ट है, माँ के सामने, कि हाउ टू डील विद इट।
1: आई थिंक बट स्टिल पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपको, पूरी नॉलेज एक बच्चे को देनी ही पड़ेगी कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, एंड प्लस इम्पावर, उस बच्चे को इतना इम्पावर करे ताकि वो उस रास्ते पर या उस चीज को टेस्ट करने की भी जरूरत न समझे, इतना हम उसको सशक्त बनाए। एंड आई थिंक बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ जो डायलॉग है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे बच्चे की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जहां हम इतना सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्या हम ये एक चीज अपने लिए नहीं तो फिर उन्हीं के लिए गिव अप कर दें? बिकॉज इट इज ऑलरेडी डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे में दो तरह के हमें दिखाई देते हैं, एक जो अपने घर में बहुत ज्यादा इस चीज को देखते हैं कि उस चीज से नफरत करते हैं, यू नो उन्हें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से नफरत होती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उस चीज को अपने घर में देखा, उसकी वजह से झगड़े देखे, तो वो अपनी लाइफ में कभी नहीं टच करेंगे। और लेकिन दूसरे वो जिन्होंने उसको बहुत हेल्दीली एक्सेप्ट होते हुए देखा अपने घर के अंदर, एंड फिर उनके लिए वो एक बहुत नॉर्मल चीज है।
0: नहीं तो फिर झगड़े होने चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग।
1: नहीं नहीं, तो दैट्स व्हाट आई सेड, दो तरह का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, या तो एकदम अवर्जन या फिर इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी नेचुरल फॉर देम।
2: कि भी ये इवेंट इसीलिए कहते हैं कि परिस्थिति आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, आप उस परिस्थिति में आपका रिएक्शन क्या है इम्पोर्टेंट है। इसी किस्से में अगर माँ बच्चे को यह समझाए कि फादर कोई भी कारण से ले रहे हैं, लेकिन बेटा इतनी बुरी चीज है तुम उसको छूना तक नहीं, और अगर बेटा माँ से अटैच है, क्योंकि बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है।
1: And I think the men need to understand कि peer pressure या social pressure या party circle इस process में अपना वो maintain करने के लिए कि सब friends ले रहे हैं, उस चीज में वो अपनी family life पर कितना negative impact डाल रहे हैं। आप friends को खुश कर रहे हैं और फैमिली को,
0: और जो कितना इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट बच्चा जो जिस एज में है, हम कहीं ना कहीं हम हर बार ये मानते आ रहे हैं कि जिम्मेदारी तो हमारी है,
1: और कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को कहाँ फिर हमें राइट रह जाएगा कुछ भी चीज के लिए रोकने के लिए। अगर वो कोई और राह पर भी चलता है, हमें क्या हक रहेगा उसे रोकने के लिए? जब हम ऐसे कई काम कर रहे हैं जो उनके कहने के बावजूद हम नहीं रोक पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिसिप्लिन करने का एक्ट है वो खत्म हो जाएगा, और हम जिस चीज के लिए रोकेंगे भी तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू हमारे बोल की फिर रहेगी नहीं, क्योंकि हम ही सही राह पर नहीं।
0: तो ये हमें एक्चुअली डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा। तो
2: हर एक फादर को ये सोचना चाहिए कि समझो मैं 1-2 पैक भी ले रहा हूँ, बच्चा 11-12 साल का हो गया कि उसको आप बाजू में बिठा के पिलाएंगे कि बेटे तू भी इतनी अच्छी चीज।
0: मैं यही तो कह रही हूँ कि फादर ये कहता है कि पहला स्मोक, पहला फैग, पहला क्रश मेरे साथ लेगा मेरा बेटा, या मैं पहला ड्रिंक मैं साथ बैठकर पिलाऊंगा।
1: क्योंकि इस चीज को हमने इसलिए सिग्निफाई कर लिया क्योंकि ये हमने सोचा ये बॉन्डिंग की निशानी है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहां इंटरनल बॉन्डिंग नहीं होगी वो हॉलोनेस है, हम ये बाह्य चीजों का

0: आधार ले लेते हैं टू शो पीपल एंड इवन टू सेटिस्फाई माई ओन सेल्फ कि नहीं हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, देखो हम कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ कि हमें छुप के कुछ भी करने की जरूरत नहीं
1: हमें छुप के मतलब के हमें खुद पता है कि हम वो नेगेटिव चीज कर रहे हैं तो हम नेगेटिव भी साथ साथ कर रहे हैं. डेफिनेटली समवेयर वी नो दैट
0: ये अपने आप को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश है.
2: कन्विक्शन तो ये होना चाहिए कि दो पैग अल्कोहल भी हार्मफुल है. जो आज डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं
1: पटेल इसी बात पे हम आ रहे हैं कि अभी तक हमने जो बातें की हैं चाहे वो स्मोकिंग की है चाहे वो गुटके की है वो ऐसी लगती है कि सिर्फ उससे कुछ अपने होश नहीं खोते हैं हम. उसके लॉन्ग टर्म ऑफकोर्स इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लेकिन हम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं. ड्रग्स हमारे आसपास कोई ज्यादा हमें नहीं दिखते हैं जो ड्रग्स लेते होंगे. एल्कोहलिज्म एक ऐसा इतना बड़ा अभिशाप इस वक्त सोसाइटी का बन चुका है जहां घर घर में अल्कोहलिज्म का एक प्रकोप कहा जाए वो है. और उसमें होता यह है कि आप अपने होश खो बैठते हैं कहीं ना अपना अपने ऊपर से आपका जो कंट्रोल है वो खराब हो जाता है. उसका जो इफेक्ट है बॉडी पे उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रकोप समाज में नजर आता है.
2: सबसे पहले तो ये बात है कि भी जो आज क्यों ज्यादा शराब पीने लगे हैं क्योंकि हमारे में मस्तिष्क में कहीं इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स है जिसके कारण हमारे में शाइनेस आती है हम कॉन्फिडेंटली बोलते नहीं ओपन अप नहीं होते हैं ऐसी कई बातें हैं. जब आप शराब पीते हैं तब वो जो इनहिबिशन है वो इनहिबिट हो जाता है. वो जो इनहिबिशन है वो कट ऑफ हो जाता है और उसके कारण व्यक्ति फ्री फील
1: एग्जिबिट कर देते हैं.
2: हाँ, वो व्यक्ति फ्री हो जाता है ना फ्रीली बोलने लगता है आराम से उसको लगता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया परंतु वो टेम्पररी फेज है. एक तो ये इनहिबिशन है वो इनहिबिशन दूर होने से आपको अच्छा लगता है. फिर जब है वो लीवर पर बहुत बड़ा डैमेज होता है. यह 100% सिद्ध हुई बात है कि जो व्यक्ति अगर आप 4-5 साल भी थोड़ी थोड़ी भी शराब पीते रहो तो लीवर सिरहोसिस होने लगता है. ऐसे पेंक्रियास कि जिसका डायबिटीज के साथ संबंध है तो पेंक्रियास पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है. पेट पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये एसिडिक है और एसिडिटी अल्सर आदि निर्माण करेगा. और सबसे जो इफेक्ट है वह है ब्रेन पर क्योंकि एक तो ब्रेन पर ये इनहिबिशन हुआ और आगे चलकर के एक बीमारी है वर्निक्स एन्केफेलोपैथी कि जिसके अंदर मेमोरी लॉस हो जाती है. व्यक्ति धीरे धीरे सचमुच एक अपाहिज की तरह जीवन व्यतीत करता है. वर्निक्स एन्केफेलोपैथी और दूसरा एक है कोर्साकॉफ साइकोसिस एक पागल की तरह व्यक्ति पर आगे के स्टेजेस है परंतु क्यों हम उसके बीच बो रहे हैं. थोड़ी भी शराब लेकर के आप उसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं. और एक चीज जो बिल्कुल एक्सेप्टेड है कि एटलीस्ट 50% एक्सीडेंट्स है वो शराब पी हुई हालत में ही होते हैं. कोई भी एक्सीडेंट्स को आप लीजिए तो इन सबको साथ में अगर होलिस्टिकली देखा
1: जाए समाज के लिए भी फिजिकल अब्यूज सबसे ज्यादा परिवारों का टूटना सबसे बड़ा कारण चाहे हम झुग्गी झोंपड़ी वर्ग में जाएं चाहे हम उस निम्न वर्ग में जाएं या फिर आज उच्च वर्ग में किसी भी वर्ग में चले जाएं सबसे बड़ा कारण क्योंकि आप कहीं ना कहीं फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं
2: अल्टीमेटली होते
1: हैं वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है. सिस्टर शिवानी बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं डिटॉक्सिकेशन के और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अल्कोहलिज्म को दूर करने में बहुत काम करते हैं लेकिन फिर यही देखा गया है कि शायद रिजल्ट्स उतने नहीं आते हैं. हाउ मच स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प एक्चुअली इन द रियल सेंस क्योंकि अल्कोहलिज्म में कहीं ऐसा लगता है कि हाथ में अपने नहीं रह गई है पावर. हाउ मच स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प.
0: स्पिरिचुअलिटी एक ओवरऑल हीलिंग करती है. आत्मा पर बहुत सारे घाव हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस के प्रेजेंट चैलेंजेस के कुछ अपनी आदतों के बहुत सारे घाव हैं. तो आध्यात्म जो हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के साथ वो सिर्फ हमारी ये आदत को नहीं छुड़ाती है. वो तो सिर्फ एक सिंपल चीज है वो तो जल्दी से छूट जाती है. अल्कोहल स्मोकिंग ये तो कुछ दिनों में छूटती है वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग. लेकिन ये हमारे डीप घाव जो लगे हुए हैं उसको हील करती है. फिर जब वो हील होने शुरू हो जाते हैं आपका वापस रिलैप्स होना वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है. इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि आपका रूट सॉल्व हो गया ना. तब अभी नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप बिहेवियरल लेवल या इवन बीमारी का समझकर आप छोड़ते भी हैं तो फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है. फिर आपको कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखाई देता और फिर आप उसकी तरफ खींचते हुए चले जाते हैं क्योंकि अंदर का जो खालीपन

0: वो तो भरा नहीं, भले बाहर से समझ कर छोड़ना चाहते थे छोड़ पाए, लेकिन जब अगली कोई चैलेंज आई तो दैट्स माय इनर एम्पावरमेंट, ये जब आप साथ में करेंगे देर इज नो वे कि देर विल बी अ रिलैप्स, क्योंकि परिस्थितियों को फेस करने की ताकत आ गई है। तनाव गुस्सा जो एक कॉमन था अभी तक वो फिनिश होता गया धीरे धीरे, डिप्रेशन ये सब कभी अनुभव नहीं होंगे, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? वेरी हेल्दी, बिकॉज मेडिटेशन से आप अपने माइंड के मास्टर बनते जा रहे हैं। सो नाउ यू नो हाउ टू क्रिएट योर हैप्पीनेस, और अगर आप अपनी हैप्पीनेस एक बार खुद क्रिएट करने शुरू कर दी है, यू डोंट नीड एनीथिंग
1: व्हेन वी अंडरस्टैंड द टेक्निक एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद के जो सुबह उठ के जो हालात होते हैं एक्चुअली पीपल डोंट लाइक इट,
0: राइट,
1: जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं एल्कोहलिज्म का, तो खासकर ये देखा गया है कि उसके बाद के जो उनके हालात होते हैं दे आर एक्चुअली दे देमसेल्फ फील वेरी बैड, उनको खुद को बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर पटेल, दो
2: मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी आज अप्रोचेस है, जैसे बहुत ही फेमस अल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक एनोनिमस भी, वहां आप देखेंगे उनके 12 स्टेप्स माने गए
1: जी।
2: वो 12 स्टेप्स सारे के सारे स्पिरिचुअल है। कुछ एक स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे सबसे पहले तो कहते हैं कि हम ये स्वीकार करते हैं कि मेरे में यह बहुत बड़ी समस्या है और मैं शक्तिहीन हूं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अल्कोहल पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। फिर दूसरी बात बताते हैं कि भी मेरे से कोई बड़ी शक्ति ही मुझे मदद कर सकती है, मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मेरे से कोई ज्यादा पावरफुल शक्ति मुझे इस व्यसन से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। तीसरा कि भी परमात्मा को जैसे भी मैं मानता हूं उस रूप से मैं परमात्मा की शरण में जा रहा हूं कि परमात्मा मुझे इस व्यसन से मुक्ति दिलाएंगे। फिर कि भी मैं अपनी सारी कमियां है परमात्मा के सामने रख रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे में यह कमियां हैं यह शक्तियां हैं और वह मैं परमात्मा के सामने रखता हूं, उससे मुझे शक्ति मिलेगी। जिस प्रकार से मैं मदद को मांग रहा हूं, नहीं प्रतिदिन मैं प्रेयर कर रहा हूं, सारे आप 12 स्टेप्स देखेंगे तो उसमें आध्यात्मिकता ही आध्यात्मिक।
0: अब इसी को हाँ मेरे को लगता है थोड़ा सा हम जैसे डिफरेंटली लेते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, यू नो ये सबसे पहली चीज हमें मिली कि मैं आत्मा का ओरिजिनल गुण ही शक्ति है। तो अभी तक जो मैं अधीन था, अभी तो कर्म इंद्रियों के भी अधीन या कोई पदार्थों के भी अधीन, वो खत्म हो जाएगा जब रोज सवेरे उठकर हम 10 मिनट के लिए भी इस तरह बैठे मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा की मैं संतान हूँ, तो मेरे अंदर कमजोरी ये हो नहीं सकती है। तो अपने आप, और जब हम वो कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन में, तो परमात्म शक्तियां सारी मांगनी नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही सारी आत्मा के अंदर भरती जाती है, अपने आप एम्पावरिंग हो जाती है। मेन चीज है सोल इतनी अपने आप को चार्ज्ड फील करती है कि उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट की जरूरत नहीं है चार्ज होने के लिए। इनफैक्ट हमें समझ में आने लगता है फिर कि ये सारे जो स्टिमुलेंट्स थे ये हमें डिस्चार्ज करते हैं, ये हमें डी एनर्जाइज करते हैं, तो हम अपना नुकसान कर रहे थे, देन व्हाई वुड बी गो टुवर्ड्स इट। इट
2: विल नॉट, राजयोग एक स्टेप अहेड है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भी वहां पर अल्कोहलिक एनोनिमस में कहते भी मैं पावरलेस हूँ, यहाँ पर पहले ही स्टेप में पावर भरती है,
1: मेरा मूल जो है वो पावरफुल है, पावर है, उसके बाद अगर आज मैं हो भी गया हूँ आई कैन एक्चुअली अगेन रीच दैट लेवल।
2: और परमात्मा से शक्ति लेने की बात तो राजयोग में भी है ही है कि मुझे परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ करके उस पावर को अपने आप में भरना है। और राजयोग की आप अगर पॉजिटिव थॉट्स भी देखेंगे, टेक्निक अगर आप देखो राजयोग की, सारी वही है कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, परमात्मा शक्ति के सागर है, उनसे मुझे शक्ति मिल रही है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव प्रोसेस ही सारा हमें मदद करता है व्यसनों से मुक्ति दिलाने।
1: आई थिंक ये तो मैं बिल्कुल पूरे अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि रोज का किया हुआ ये अभ्यास कहीं ना कहीं हमारे अपने आत्मबल को बढ़ा देता है। जो शक्ति को मैं फील करना चाहती हूँ कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। डॉक्टर पटेल, चलते चलते आज की इस पूरी बातचीत में एक बात हम ये जानना चाहेंगे, हमने जितने भी व्यसनों की फिजिकल एस्पेक्ट की तरह जो बड़े बड़े व्यसन थे, चाहे वो ड्रग एडिक्शन था, चाहे वो स्मोकिंग थी, चाहे वो गुटखे की बात है, ड्रिंकिंग की बात है, एक बार किया गया या रोज रोज किया गया, दोनों में से क्या सभी सही है, दोनों में से कोई भी सही है?
2: बहुत सारी इक्वली हार्मफुल, क्योंकि एक बार भी किया तो आगे चल के आदत हो जाएगी, कई बार आपके पास समस्या आई तो वही चीज आपको याद आएगी, तो इसके कारण बेस्ट तो यह है

0: कई बार जो हम ड्रिंक्स की बात करते हैं वो पीयर प्रेशर में, सोशल प्रेशर में शुरू करते हैं, कई बार डिप्रेशन में शुरू करते हैं। दोनों के अलग अलग भावनाएं होती हैं जब करते हैं। छोड़ना दोनों में ही आसान है?
1: बहुत आसान है। एंड आई वुड से एनीवन वाचिंग दिस प्रोग्राम नाउ, अगर कहीं भी थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है, जस्ट वॉक अप टू द नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर एंड जस्ट गो देयर फॉर अ फ्यू डेज। बस थोड़े से दिन जाइए, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कीजिए, आपको एक बहुत पॉजिटिव चार्ज्ड मेडिटेशन रूम मिलेगा, बहनें मिलेंगी जो आपसे इसकी विधि को आपके साथ शेयर करेंगी सिर्फ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमने शुरू से देखा एक एक्सपेरिमेंट है। तो थोड़े दिन के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, लाइफ विल चेंज डेफिनेटली।
0: ओके सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, बहुत अच्छा लगा आज की इस पूरी बातचीत के लिए। अभी हमने उन एडिक्शंस की बात की है जो सामने सामने नजर आती हैं, जो हमारे अपने अंदर चल रही हैं एडिक्शंस। अगर मैं कहूं कि एंगर एक एडिक्शन है, जैसे आपने कहा था एक बार कि चॉकलेट भी एडिक्शन हो सकती है, या कहीं ना कहीं टेंशन एडिक्शन है, पेन लेने की एडिक्शन है, रिलेशनशिप्स में एडिक्शन है कि मैं आपके प्रति इतना ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा, किस तरह से ये एडिक्शंस, ये आदतें भी हमारे लिए मजबूरी बन सकती हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो उनके ऊपर बातचीत करना अभी बाकी है, आने वाली कड़ियों में उन्हें जरूर हम शेयर करेंगे आपके साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमने ये मान लिया कि जो आदत हमारी जिंदगी में आ गई है, चाहे वो स्मोकिंग की है, चाहे वो ड्रिंकिंग की है, चाहे वो गुटखे की है, वो आदत है और उससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। मेंटली मैं अपने आप को बहुत चेंज कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी। जैसा कि सिस्टर शिवानी ने कहा कि एक बार भी ये थॉट अगर हमारे पास आ जाता है कि मुझे इन व्यसनों से बाहर निकलना है, इन आदतों को छोड़ना है, तो फिर आप वो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही अनुभव होगा। आप किसी भी राजयोग सेंटर जा सकते हैं, खुद को इतना बुलंद कर सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और इन सभी आदतों को अगर अपने लिए नहीं, किसी अपने के लिए, अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप एक वादा कीजिए अपने आप से कि ये कदम जरूर उठाकर देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरिया 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 8 FM. मी स्मिता जयकर आनंदी रहा आनंदवान.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूँ आरजे शिवप्रिया. आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रोते हो, आज हम चर्चा करेंगे राजयोग मेडिटेशन की विधि, आधार और उसकी प्राप्तियों की. श्रोते हो, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए और शीघ्र ही आध्यात्मिकता में उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राजयोग मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है. अर्थात परमात्मा का ध्यान, इसे ही योग कहा गया है. राजयोग मेडिटेशन अर्थात चलते फिरते और कार्य व्यवहार करते हुए भी परमात्मा की स्मृति में स्थित होने का अभ्यास. यद्यपि निरंतर योग के बहुत लाभ है और निरंतर योग द्वारा ही मनुष्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है. विशेष रूप से योग में बैठना आवश्यक है. परमात्मा को याद करते समय हमें अपनी बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी होती है. मन चंचल होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तरफ भागता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हमें इसको एक परमात्मा की याद में ही स्थित करना है. देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर आत्मिक स्थिति में टिककर आत्मस्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्मृति में रहना ही वास्तविक योग है. जैसे हम मनुष्य आत्मा है, उसी प्रकार आत्माओं का पिता भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो सभी में परम है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, इसीलिए हम उन्हें परम आत्मा कहते हैं. और वह सभी मनुष्य आत्माओं के पिता है, इसीलिए हम उन्हें परम पिता कहते हैं. कई मनुष्य योग को बहुत कठिन समझते हैं. वे कई प्रकार की हट क्रियाएं, प्राणायाम करते हैं. प्राणायाम शरीर के लिए तो आवश्यक है, लेकिन योग जो है वो वास्तव में परमात्मा की याद को कहा जाता है. जैसे कि एक बच्चे को अपने देहधारी पिता की सहज और स्वतही याद रहती है, वैसे ही आत्मा को अपने पिता परमात्मा की याद स्वतः और सहज होनी चाहिए. इस अभ्यास के लिए यह सोचना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं. मैं ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ. जो परमपिता ब्रह्मलोक के वासी है, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर और सर्वशक्तिमान है. ऐसा मनन करते हुए मन को ब्रह्मलोक में परमपिता परमात्मा शिव पर स्थित करना चाहिए और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए. जब मन इस प्रकार की स्मृति में स्थित होगा, तब सांसारिक संबंधों और वस्तुओं का आकर्षण अनुभव नहीं होगा. जितना ही परमात्मा द्वारा सिखाए गए ज्ञान में निश्चय होगा, उतना ही सांसारिक विचार और लौकिक संबंधियों की याद मन में नहीं आएगी और उतना ही अपने स्वरूप का, आत्मिक स्वरूप का और परम

प्रिय परमात्मा के गुणों का अनुभव होगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की स्मृति में नहीं टिकता, अर्थात हमारा योग नहीं लगता। इसका एक कारण तो यह है कि वे आत्मनिश्चय में अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते, देह भान में फंस जाते हैं, शरीर को ही भूलने की कोशिश नहीं करते और शरीर भान में फंसने से, स्वयं को आत्मा ना समझने से उनका योग नहीं लगता। आप जानते हैं कि जब बिजली के दो तारों को जोड़ना होता है तब उनके ऊपर के रबर को हटाना पड़ता है, तभी उनमें करंट आता है। इसी प्रकार यदि कोई देह के भान में होगा तो उसे भी अव्यक्त अनुभूति नहीं होगी, उसके मन की तार परमात्मा से नहीं जुड़ सकती। दूसरी बात यह है कि वे तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापक मानते हैं, लेकिन परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है। परमात्मा का नाम शिव है, रूप ज्योतिर्बिंदु आत्मा है और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं लेकिन परम धाम में पवित्र स्थान में रहने वाले ब्रह्मलोक के वासी है। मनुष्य आत्मा अपने मन को कोई ठिकाना भी नहीं दे सकते, परंतु अब तो यह स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा का दिव्य नाम शिव, दिव्य रूप ज्योतिर्बिंदु और दिव्य धाम परम धाम ब्रह्मलोक है। वहां मन को टिकाना सहज हो सकता है। तीसरी बात यह है कि उन्हें परमात्मा के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का भी परिचय नहीं है, इसी कारण परमात्मा के प्रति उनके मन में घनिष्ठ स्नेह नहीं होता। अब यह ज्ञान हो जाने पर हमें ब्रह्मलोक के वासी परम प्रिय परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु की स्मृति में रहना सहज हो जाता है कि वो हमारे परम पिता है, हम आत्माओं के पिता। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में

0: आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें, धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है. दिस इज द पावरफुल बीइंग.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो खुशियां बांटो.
2: सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूं आरजे शिवप्रिया. आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रोते हो, वास्तव में योग का अर्थ ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान, पतित पावन परमात्मा शिव के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना है, ताकि आत्मा को भी शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और दिव्य गुणों की विरासत प्राप्त हो. योग के अभ्यास के लिए योगी को आचरण संबंधी कुछ नियमों का अथवा दिव्य अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और मनुष्य के चित्त को सदा प्रसन्न अथवा हर्षयुक्त बनाना है. दूसरे शब्दों में योग की उच्च स्थिति किन्हीं आधारभूत स्तंभों पर टिकी होती है. इसमें से एक है ब्रह्मचर्य या पवित्रता. योगी शारीरिक सुंदरता या वासना भोग की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है. वह आत्मा की सुंदरता को ही पूर्ण महत्व देता है. उसका जीवन ब्रह्मचर्य शब्द के वास्तविक अर्थ में ढला होता है, अर्थात उसका मन ब्रह्म में स्थित होता है और वह देह की अपेक्षा आत्म अभिमानी अवस्था में रहता है, अर्थात स्वयं को आत्मिक स्मृति में ही रखता है. अतः वह सबको भाई भाई के रूप में देखता है और आत्मिक प्रेम व संबंध का ही आनंद लेता है. यह आत्मिक स्मृति और ब्रह्मचर्य इसे बहुत ही महान शारीरिक शक्ति, कार्यक्षमता, नैतिक बल और आत्मिक शक्ति देते हैं. यह उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और उसे निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता देते हैं. दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है सात्विक आहार. मनुष्य जो आहार करता है उसका उसके मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ता है. इसलिए योगी मांस, अंडे, उत्तेजक पेय या तंबाकू या कोई भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करता. अपना पेट पालने के लिए वह अन्य जीवों की हत्या नहीं करता, न ही वह अनुचित साधनों से धन कमाता है. वह पहले भगवान को भोग लगाता है और तब प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है. भगवान द्वारा स्वीकृत वह भोजन उसके मन को शांति व पवित्रता देता है. तभी जैसा अन्न वैसा मन की कहावत के अनुसार योगी का मन शुद्ध होता है और उसकी कामना कल्याणकारी तथा भावना शुभ बनी रहती है. अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ है सत्संग. जैसा संग वैसा रंग, इस कहावत के अनुसार योगी सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सदा सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ ही संग बना रहे. वह कभी भी कुसंग में अथवा कुविचारों में समय व्यर्थ नहीं गवाता. वह एक ही प्रभु की याद

व लगन में मग्न रहता है। चौथा स्तंभ है दिव्य गुण। योगी सदा अन्य आत्माओं को भी अपने दिव्य गुणों, दिव्य विचार तथा दिव्य कर्मों की सुगंध से अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता रहता है, न कि आसुरी स्वभाव, विचार व कर्मों के वशीभूत होता है। विनम्रता, संतोष, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, अंतर्मुखता, सहनशीलता और अन्य दिव्य गुण योग का मुख्य आधार है। योगी स्वयं तो इन गुणों को धारण करता ही है, साथ ही अन्य दुखी, भूली, भटकी और अशांत आत्माओं को भी अपने गुणों का दान करता है और उनके जीवन में सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से अर्थात मन का नाता परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ने से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां भी आ जाती है। इनमें से 8 मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से एक है सिकुड़ने और फैलाने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सिकुड़ लेता है, जब चाहे उन्हें फैला लेता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे आत्मिक स्मृति में एवं शांत अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार की विदेही अवस्था रहने से उस पर माया का वार नहीं होगा। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार को मुसाफिर खाना तो सभी कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में वे इतना तो विस्तार कर लेते हैं कि अपने कार्य और बुद्धि को समेटना चाहते हुए भी समेट नहीं पाते। जबकि योगी अपनी बुद्धि को इस विशाल दुनिया में न फैलाकर एक परमपिता परमात्मा की तथा आत्मिक संबंध की याद में ही अपनी बुद्धि लगाए रखता है, वह कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का बिस्तरा व पेटी समेटकर सदा अपने घर परमधाम में चलने को तैयार रहता है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी मीठे फल देता है और अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, वैसे ही एक योगी भी सदा अपकार करने वालों के प्रति सदा शुभ भावना और कामना ही रखता है। राजयोग मेडिटेशन से जो चौथी शक्ति प्राप्त होती है

वह है समाने की शक्ति। योग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि विशाल बना देता है और मनुष्य गंभीरता और मर्यादा का गुण धारण करता है। थोड़ी सी खुशियां मान पद पाकर वह अभिमानी नहीं बन जाता और न ही किसी प्रकार की कमी आने पर या हानि होने के अवसर पर दुखी होता है। वह तो समुद्र की तरह सदा अपनी दैवी कुल की मर्यादा में बंधा रहता है और गंभीर अवस्था में रहकर दूसरी आत्माओं के अवगुणों को न देखते हुए केवल उनसे गुण ही धारण करता है। योग से अन्य शक्ति जो मिलती है वह है परखने की शक्ति। जैसे एक जौहरी आभूषणों को कसौटी पर परख कर उसकी असल और नकल को जान जाता है, ऐसे ही योगी भी किसी भी मनुष्य आत्मा के संपर्क में आने से उसको परख लेता है और उससे सच्चाई या झूठ कभी छिपा नहीं रह सकता। वह तो सदा सच्चे ज्ञान रत्नों को ही अपनाता है और अज्ञानता के झूठे कंकड़ पत्थरों में अपनी बुद्धि नहीं फंसाता। एक योगी को महान निर्णय शक्ति भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। वह व्यर्थ संकल्प और पर चिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु चिंतन में रहता है। योग के अभ्यास से मनुष्य को सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि उसके सामने अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा आ भी जाए अथवा सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप भी धारण कर ले, तो भी वह कभी विचलित नहीं होता और उसका आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है तथा अन्य आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देता रहता है। अन्य शक्ति जो योग के अभ्यास से प्राप्त होती है वह है सहयोग की शक्ति। एक योगी अपने तन मन धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वे कलयुगी पहाड़ विकारी संसार को उठाने में अपनी पवित्र जीवन रूपी अंगुली देकर इस धरा पर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन जाता है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, राजयोग मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास से मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य सांसारिक रुकावटों को पार करता हुआ आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रेसर होता है। आज मनुष्य

अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंता और परेशानियों से ग्रसित है और यह सृष्टि ही घोर नरक बन गई है। इससे निकलकर स्वर्ग में जाना हर एक प्राणी चाहता है, लेकिन नरक से स्वर्ग की ओर का मार्ग कई रुकावटों से युक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके रास्ते से मुख्य बाधा डालते हैं। इस घोर कलयुग में ये धरती ही नरक बन गई है और सतयुग में इसी धरा पर स्वर्ग था। इस धरा को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए पहले पहले मनुष्य को काम विकार की ऊंची दीवार को पार करना पड़ता है। इसको पार करने में कई व्यक्ति देह अभिमान के कारण से सफलता नहीं पा सकते हैं। विकारी दृष्टि, कृति, वृत्ति ही मनुष्य को इस दीवार को पार करने नहीं देती। अतः पवित्र दृष्टि बनाना इन विकारों को जीतने के लिए अति आवश्यक है। इस धरती को स्वर्ग बनाने में दूसरा भयंकर विघ्न है क्रोध, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध के वश होकर मनुष्य सत्य और असत्य की पहचान भी नहीं कर पाता है और साथ ही उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि विकारों का समावेश हो जाता है, जिसकी अग्नि में वह स्वयं तो जलता ही है, साथ में अन्य मनुष्यों को भी जलाता है। इस बाधा को पार करने के लिए स्वधर्म में, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस स्थिति में स्थित होना अत्यावश्यक है। लोभ भी मनुष्य को उसके सत्य पथ से परे हटाने के लिए मार्ग में खड़ा है। लोभी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती और वह मन को परमात्मा की याद में नहीं टिका सकता। अतः स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धन व खजाने के लालच और सोने की चमक के आकर्षण पर भी जीत पानी है। मोह भी एक ऐसी बाधा है जो जाल की तरह खड़ी रहती है। मनुष्य मोह के कड़े बंधन वश अपने धर्म व कार्य को ही भूल जाता है और पुरुषार्थहीन बन जाता है। तभी गीता में भगवान ने कहा है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों के मोह जाल से निकलकर परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्य को करो, इससे ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य आत्मा मोह के बंधनों से मुक्ति पाए, तभी माया के बंधनों से छुटकारा मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अहंकार भी मनुष्य की उन्नति के मार्ग में पहाड़ की तरह रुकावट डालता है। अहंकारी मनुष्य कभी भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता है। अहंकार के वश मनुष्य पहाड़ी की ऊंची चोटी से गिरने के समान चकनाचूर हो जाता है। अतः स्वर्ग में जाने के लिए अहंकार को भी जीतना अति आवश्यक है। अतः याद रहे कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य से देवता बनने वाले ही नर नारी स्वर्ग में जा सकते हैं, वरना हर एक व्यक्ति के मरने के बाद जो कह दिया जाता है कि वह स्वर्गवासी हुआ, यह सरासर गलत है। यदि हर कोई मरने के बाद

हमारे संस्कारों में परिवर्तन लाना, तभी ये धरा स्वर्ग बन सकती है। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।

जीती आ ई की माँ के जीती आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकला मैं हर चिट्ठी।

I see

0: से चलता है, मांगने सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगड़ी से बट पर वोट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा शांति
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: लेके अंगड़ाई शरीर बजन बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई। आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्म आई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1830 में बनारस में हुआ था। उन्होंने बचपन में लिखाई पढ़ाई के साथ साथ हथियार चलाना भी सीख लिया था। 14 साल की उम्र में उनका विवाह महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र बना लिया। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात डलहौजी की हड़प नीति के चलते अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधीन कर लिया। 1857 में जैसे ही मेरठ के सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत की, रानी ने भी झांसी की बागडोर अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। वे क्रांतिकारी सिपाहियों की मदद करने लगी। उन्होंने काफी समय तक झांसी किले की रक्षा की, लेकिन 1858 में अंग्रेजों ने एक बार फिर झांसी पर हमला किया। रानी की 14,000 सैनिकों की फौज ने 2 हफ्तों तक अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया और अंततः रानी को झांसी छोड़कर कालपी जाना पड़ा। अंग्रेजों ने रानी को पकड़वाने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। झांसी की रानी को मर्दानी की संज्ञा सबसे पहले अंग्रेजों ने ही दी थी। कालपी में रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर भावी रणनीति बनाई और ग्वालियर को अंग्रेजों से छीन लिया। अंग्रेजों ने ग्वालियर वापस पाने के लिए फिर उनसे मुकाबला किया। 17 जून 1858 को युद्ध में लड़ते लड़ते रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई हमेशा के लिए वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक बन गईं।

0: घंटे भर से प्याज और मिर्ची लगा दी है, बता रहे हैं न रोटी का पता है न दाल का पता है।
1: अब कुछ बोलो तो बुरा मान जाते हैं।
0: अरे गजबी है काका, अरे दाल तो भिजवा दो इधर।
2: अरे आ रही है, आ रही है भाई, लड़का ला तो रहा है। अरे दाल लगा दे जल्दी से इधर।
3: और ये कहाँ का गाना लगा दिया रेडियो पर?
2: क्यों, क्या बुराई है इसमें?
1: अरे बुराई की बात नहीं है, अरे सुनवा दो कजू चटपटा सुनवाओ।
2: अरे चटपटे बटपटे ही गाने सुनते रहोगे, या कभी उनके भी गाने सुन लिया करो जो देश के लिए शहीद हुए हैं। ये कोई चलता हुआ गाना नहीं है, 150 बरस से बुंदेलखंड के गांव गांव में गाया जाता रहा है ये लोकगीत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी।
0: झांसी वाली रानी? काका सुना तो बहुत कुछ है इसके बारे में,
1: पर मालूमात कुछ भी नहीं है काका।
2: अरे तो फिर हम किस लिए हैं?

सन 1857 ईस्वी में प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की फौजों को शिकस्त देने के बाद फिरंगी ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते कदमों को रोक पाना असंभव सा हो गया था। बंगाल और बिहार के साथ साथ समूचा अवध उसके खूनी चंगुल में आ चुका था। इधर पूना की पेशवाई को तहस नहस कर कंपनी सारी देशी रियासतों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेने के लिए नित नए मंसूबे गढ़ रही थी। इन्हीं मंसूबों के तहत पूना के बाजीराव पेशवा को अपना सब कुछ छोड़कर दूर कानपुर के पास बिठू

0: की छोटी सी जागीर पर संतोष करना पड़ा। पेशवा के विश्वस्त सहयोगी मोरोपंत भी उन्हीं के साथ बिठूर चले आए। साथ में थी उनकी इकलौती बेटी मनुबाई, जो आगे चलकर लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। बाजीराव पेशवा निसंतान थे, अतः उन्होंने एक बालक को गोद लिया। नाम था नाना धुंधु पंत, जिन्हें आगे चलकर महान क्रांतिकारी नाना साहब के नाम से जाना गया। और मनुबाई इन्हीं नाना की मुंहबोली बहन थी।
1: हर जमक उठी कन सत्तावन ने, जमक उठी कन सत्तावन ने।
0: नाना साहब और तात्या टोपे के साथ हर तरह के हथियार चलाने में निपुण होने के साथ साथ मनुबाई राजनीतिक दांव पेचों को भी बारीकी से समझती जा रही थी। इन्हीं दिनों झांसी के राजा गंगाधर ने मनुबाई को विवाह का प्रस्ताव भेजा।

0: अब आप इस झांसी की महारानी हैं। दास दासियां सेवक चाकर सब आपकी सेवा में हाजिर हैं। जिस चीज की इच्छा हो बस इशारा भर कीजिए कि हाजिर।
1: जिस भी चीज की?
0: हाँ, जिस चीज की भी।
1: तो ठीक है, कुछ बहुत अच्छे घोड़े,
0: घोड़े
1: कुछ बंदूकें, कुछ तलवारें, ढाल, बर्छियां, भाले।
0: रानी, ये आप क्या?
1: महाराज, आपने मुझे अपनी रानी का सम्मान दिया है तो मैं उसी के अनुकूल वो सब कुछ तुरंत आरंभ कर देना चाहती हूँ जो एक रानी के नाते मुझे करना चाहिए। मैं यहाँ स्त्रियों को फौजी प्रशिक्षण दूंगी ताकि वक्त आने पर वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकें।
0: ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।
1: शाबाश, हम सबकी अब एक अच्छी खासी घुड़सवार टुकड़ी तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं इतने पर भी सब्र नहीं करने वाली। मैं चाहती हूँ तुम्हें तोपे चलाने का भी भरपूर मौका दिया जाए। क्यों गुलाम गौस खान?
2: जो हुक्म रानी साहिबा।
3: इसी बीच रानी ने एक बालक को जन्म दिया। झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। नवजात राजकुमार असमय राजा रानी को रोता बिलखता छोड़ चले गए। रानी ने जल्द ही अपने दुख पर काबू पा लिया, लेकिन राजा जी ये आघात सहन न कर सके, वे बीमार रहने लगे। रानी ने इन हालात में हिम्मत से काम लिया और शासन के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया।
4: रानी, मेरा विचार है अपने ही वंश का कोई बालक गोद ले लिया जाए।
1: जैसी आपकी इच्छा महाराज, शायद विधाता की भी यही मर्जी है, वरना आपका उत्तराधिकारी यूं आकर भी गोद क्यों सुनी कर जाता।
4: तो जिस बालक को तुम उचित समझो गोद लेने के लिए चुन लो। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो ये रस्म पूरी कर ली जाए।
1: जी अच्छा।
0: मैं झांसी का राजा गंगाधर राव आज विधि और विधान के अनुसार अपने पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर राव को अपने दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण करता हूँ और घोषित करता हूँ कि दामोदर राव मेरे बाद इस राजगद्दी के असली वारिस होंगे। दीवान जी।
5: जी महाराज।
0: कंपनी बहादुर को इस बाबत एक खत तुरंत भेजा जाए।
5: जो हुक्म महाराज।
3: गोद लेने की रस्म पूरी होने के कुछ ही दिनों बाद अचानक राजा गंगाधर राव स्वर्ग से धार गए। 18 बरस की कच्ची उम्र में रानी लक्ष्मीबाई पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन संकट की घड़ियों में रानी ने असीम धैर्य और साहस का परिचय दिया। अपने नाबालिग दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी पर बिठाकर रानी ने उसकी संरक्षिका के रूप में शासन की बागडोर संभाल ली। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल डलहौजी ने किसी भी राजा के दत्तक पुत्र को वारिस के रूप में मान्यता न देने की एक अजब सी नीति चला रखी थी।
6: रानी साहिबा, हम लाट साहब डलहौजी का फरमान लेकर आया है। हम आपको बताना मांगता है कि झांसी का राजगद्दी खाली है।
1: खाली कैसे? इस पर महाराज के वारिस दामोदर राव बैठे।
6: लेकिन उनको गद्दी पर बैठने का इख्तियार नहीं है।
1: क्यों नहीं? वो बाकायदा गोद लिए बेटे हैं, दत्तक पुत्र हैं।
6: नो नो नो, हिज एक्सीलेंसी गोद लिया बेटा को कानूनी वारिस नहीं मानता है।
1: उनके मानने न मानने से क्या होता है? हमारे शास्त्रों में विधान है कि दत्तक पुत्र असल पुत्र की जगह हो।

0: आई नो, अगर गवर्नर जनरल नहीं मानता है तो नहीं माना जाएगा, दैट्स ऑल। आज और इसी वक्त से झांसी पर आपका हुकूमत खत्म होता है। झांसी स्टेट कंपनी बहादुर की हुकूमत में शामिल होता है।
1: नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
2: रानी साहिबा, फिरंगी फौजों ने झांसी पर घेरा डाल दिया है और हम इनका मुकाबला करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। मेरी विनती है रानी साहिबा, इस वक्त सब्र से काम ले वरना झांसी बर्बाद हो जाएगी।
1: शायद आप ठीक कहते हैं दीवान जी, ठीक है। आज मेरे देखते देखते जो झांसी हाथ से जा रही है, एक न एक दिन मैं इसे वापस लेकर रहूंगी और वो दिन जल्द ही आएगा।
3: अंग्रेज बेखबर थे और रानी बड़ी होशियारी से अपनी तैयारी में व्यस्त थी। आसपास के इलाकों में घूम घूम कर वो जंगल, पहाड़ों, नदी नालों का युद्ध की दृष्टि से जायजा भी ले रही थी और जनमानस को भी टटोल रही थी। इस दौरान तात्या टोपे, नाना साहब और अन्य क्रांतिकारियों से उसका निरंतर संपर्क कायम था।
4: मनु?
1: हाँ तात्या, मैंने तो अपनी तरफ से काफी तैयारी कर ली है। देसी पलटन की एक बड़ी टुकड़ी मेरा साथ देने तैयार है, लड़कियों की भी एक बड़ी टुकड़ी तैयार है। इसके अलावा फिरंगियों ने जो हमारी फौज भंग की थी उसके भी ज्यादातर फौजी हमारे साथ हैं।
4: वाह, बहुत अच्छी तैयारी है। मैं भी अवश्य दिल्ली तक घूम घूम कर सबसे मिलता रहा हूँ। रुपया पैसा भी काफी जमा हो चुका है। सन्यासी और फकीरों के वेश में अपने साथी गाँव गाँव शहर शहर घूमते हुए विद्रोह की अलग जगा रहे हैं। नाना साहब और अजीमुल्ला खां का कई हिंदुस्तानी फौजियों से संपर्क कायम है।
1: दूर दूर तक सबको एकता के सूत्र में बांध रहे हैं।
4: मनु, अहमद शाह की भैरवादी की जोशीली तकरीरों ने मुर्दों में नई जान फूंक डाली है। लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। फिरंगी फौजों के हिंदुस्तानी सैनिक बस उस दिन के इंतजार में है कि इशारा पाते ही वो एक साथ फिरंगियों पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे।
1: कोई तारीख तय हुई?
4: बात चल रही है मनु, बस पक्की होते ही खबर पहुंचा दूंगा।
1: तो ठीक है। वैसे शाहगढ़ के बखतबली और बानपुर के मर्दन सिंह मेरे संपर्क में हैं। वो लोग बांदा के नवाब को भी साथ लेने की तैयारी कर चुके हैं। अब बस तुम्हारी तरफ से इशारे की देर है। फिरंगी फौजों ने बानपुर फतेह कर लिया है और अब वो झांसी की तरफ बढ़ रही है। तात्या टोपे को संदेश भेजा है कि मदद के लिए फौरन आ जाए। गुलाम वास्ता?
5: जी सरकार।
1: आपकी तोपें तैयार हैं?
5: जी, हर तोप तैयार है। कुछ तोपों की मरम्मत भी पूरी हो चुकी है।
1: ठीक है सुंदर।
6: जी रानी साहिबा।
1: झांसी के आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ घास नजर आए उसे जला डालो, जहाँ जहाँ घने दरख्त हो उन्हें गिरा दो। मैदानी इलाका इतना उजाड़ हो कि फिरंगी फौजों को न चारा नसीब हो न दरख्तों का साया। रसद मिलने के भी सारे ठिकाने खत्म कर डालो। इस काम पर अलग अलग दिशाओं में अपनी टुकड़ियां फौरन लगा दो। मुंद्रा, मुझे दूरबीन दे। सर हीरोज भारी नाव लश्कर के साथ बढ़ा आ रहा है। गुलाम गौस खान, मेरा इशारा मिलते ही अपनी शानदार घन गर्जन तोप को दाग देना।
5: जी सरकार।
1: गागो। आज इसी वक्त से झांसी आजाद है। मैं दामोदर राव के सरपरस्त की हैसियत से झांसी की गति संभालूंगी। ऐलान किया जाए।
7: अलग सूजा

0: देखो, इसका मतलब हमारा किला पूरी तरह फिरंगियों के लिए खुल चुका है।
1: फिरंगी फौजें किसी वक्त किले में दाखिल हो सकती हैं।
0: तो ठीक है, तुम सब लोग सुरंग के रास्ते किले से बाहर निकल जाओ। मैं तूफान के बारूद भंडार में जाकर खुद को खत्म कर लूंगी।
2: नहीं नहीं, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता।
3: जब किसी तरह मरना है तो आप अकेली क्यों रानी साहिबा? हम सभी मरेंगे।
4: हम भी इसी तरह जान दे देंगे, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे।
1: हम सिर्फ कमजोर हुए रानी जी, हारे नहीं है। आपकी छत्र छाया रहे तो हम अभी भी चिड़ियों को खदेड़ सकते हैं। हो सकता है तात्या टोपी हमारी मदद के लिए प्रयत्न कर रहे हो।
0: तो ठीक है, तात्या काल्पी ना आ सके तो क्या हुआ, हम तो काल्पी जा सकते हैं।
2: हाँ।
0: तो चलो काल्पी।
2: रानी लक्ष्मीबाई की।
5: उसी रात मर्दाना भेज में रानी किले की दीवार से हाथी की पीठ पर कूदी, पीठ पर दामोदर राव को बांधा और एक सफेद घोड़े पर सवार होकर काल्पी की ओर चल पड़ी। अंग्रेज लगातार उसका पीछा कर रहे थे। दोनों हाथों से तलवार चलाती, फिरंगियों को मारती काटती रानी लक्ष्मीबाई बिना रुके मीलों दूरी का सफर तय कर काल्पी जा पहुंची। वहां पहुंचते ही रानी के वफादार घोड़े ने दम तोड़ दिया। रानी ने वहां मौजूद तात्या टोपे, नवाब बांदा, बानपुर और शाहगढ़ के बहादली व मर्दन सिंह से सलाह ली। नाना साहब की ओर से उनके छोटे भाई राव साहब ने रानी का स्वागत किया। रानी ने यहाँ फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला।
0: बहादुर सिपाहियों, मेरी टुकड़ी का नाम होगा लाल कुर्ती। फिरोज की फौजें किसी भी दम काल्पी पर हमला कर सकती हैं। अपनी फौज में मुझे जाबाज सिपाहियों की जरूरत है। तुम में से जिसे भी मौत का डर हो वो इसी वक्त मेरी फौज से जा सकता है।
4: नहीं, हम मरते दम तक आपकी आज्ञा मानेंगे।
1: हम आपके एक इशारे पर हंसते हंसते सर कटा देंगे।
4: हमारा एक ही नारा है, फिरंगियों से लड़ेंगे,
1: मारेंगे या मर जाएंगे।
0: शाबाश।
6: मनु, खबर मिली है कि हीरोज की फौजें काल्पी की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही हैं।
0: मुझे तो अपनी लाल कुर्ती टुकड़ी पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या राव साहब की सारी पलटन मैदान में फिरंगियों से लोहा ले सकेंगी?
6: क्या बताऊं मनु भाई, नाना साहब की गैर मौजूदगी में राव साहब यहाँ की कमान संभाले बैठे हैं।
0: लेकिन वो खुद तो भांग की तरफ भी रहते हैं।
6: हाँ, उनके ज्यादातर फौजी और अफसर भी वैसे ही हैं। इसके अलावा जाने कहाँ कहाँ के लुटेरे और डकैत भी इनकी फौज में घुस आए हैं।
0: मैंने उनसे कहा था राव साहब, अपनी फौज को थोड़ा चुस्त दुरुस्त बनाओ।
6: तो क्या जवाब दिया उन्होंने?
0: बस हाँ हूँ कह के टाल गए।
6: वो कुछ नहीं करेंगे, और दोबारा कहोगी तो हो सकता है कि बुरा मान जाएं।
0: पर क्यों?
6: कई बार कोशिश करने के बाद मैंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। बुरा मत मानना, राव साहब को उच्च कुल के होने का घमंड है, लिहाजा मुझ तरीके साधारण हैसियत वाले की बात मानना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं।
0: क्या कह रहे हो तात्या?
6: रही बात तुम्हारी, तो तुम एक स्त्री हो और ऊपर से उम्र में बहुत छोटी।
0: ये क्या बात हुई? ये छोटे और बड़े का फर्क, ये मर्द और औरत का भेदभाव आखिर क्यों?
6: फिरंगी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन ये खोखला दम्भ उनका पीछा नहीं छोड़ पाता।
0: कमाल है, नाना साहब में तो ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं।
6: यही तो फर्क है उनमें और नाना साहब में। खैर जो भी हो, फिरंगियों से जंग तो मिलकर ही करनी है।
0: सही है, भले ही अलग अलग विचार हो, अलग अलग मानसिकताएं हो, लेकिन लक्ष्य तो हमारा एक ही है।
6: बिल्कुल सही।

0: रानी साहिबा, किले पर तो सिंधिया और फिरंगी का झंडा उतारकर पेशवाई का झंडा फहरा दिया है। सिंधिया महाराज के खजानजी अमर सिंह बाठिया ने तो सारा खजाना सौंप दिया है।
1: अपने सब फौजियों को तनख्वाह बांट दी गई है। राव साहब दरबार बुलाकर पेशवाई का राज तिलक भी करवाने वाले हैं।
0: ऐसी धूम, ऐसी रौनक की पूछिए मत। जगह जगह नाच गाने हो रहे हैं,
1: मिठाइयाँ लुटाई जा रही हैं,
0: भांग बूटी की तो बरसात हो रही है।
2: बस यही एक बात है जो मुझे खटक रही है। राज तिलक हो रहा है, खुशी की बात है, थोड़ी धूमधाम भी हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये भांग बूटी और नाच गाना इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं। फिरंगी किसी वक्त भी इस तरफ रुख कर सकते हैं,
3: लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
2: जिन्हें जो करना है करते रहें, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। आसपास के पहाड़ी इलाके, घाटियों और मैदानों का जायजा लेंगे।
4: और रानी ने यही किया। तपती दोपहरी और तेज लू के झोंकों में रानी अपने कुछ साथियों के साथ ग्वालियर का भौगोलिक और सामाजिक निरीक्षण करने में जुट गई। और तभी फिरंगी फौजों ने ग्वालियर को घेर लिया। तात्या टोपे अपनी सेना लेकर मुकाबला करने बढ़े, लेकिन फिरंगी फौजों ने उन्हें तितर बितर कर दिया। रानी ने उनमें नई हिम्मत फूंकी और नए सिरे से व्यूह रचना की।
2: तात्या जी, इस समय किले का पूर्वी फाटक सबसे ज्यादा खतरे में है।
5: आप ठीक कहती हैं।
2: तो इस फाटक की रक्षा का भार मुझ पर रहेगा।
6: वो देखो, जनरल स्मिथ ने अपनी फौज के साथ पूर्वी फाटक पर हमला बोल दिया है।
7: और रानी को तो देखो, किस बहादुरी से उसने फिरंगियों को खदेड़ दिया है।
8: देखो, घोड़े पे सवार रानी अपनी तलवार चमकाती फाटक से बाहर निकल आई है।
7: फिरंगियों को गाजर मूली की तरह काट छाट कर फिर फाटक पर जम गई।
6: सुबह से शाम हो गई, लेकिन रानी ने अपने घोड़े से उतरने का नाम तक नहीं लिया।
7: बिजली की तरह हर मोर्चे को संभाल रही है।
8: जो थक हार कर जनरल स्मिथ ने पूर्वी फाटक का रुख ही तोड़ दिया।
1: रानी जी, हमारी तोपें ठंडी हो गई हैं।
2: हमारी सारी फौज तितर बितर हो गई है। हम चारों ओर से घिर चुके हैं।
1: हम लोग भी गिनती के ही रह गए हैं। 15-20 फौज ही बचे हैं।
2: हम फिरंगी फौजों को चीरते हुए दूसरी तरफ मौजूद अपने साथियों से मिल जाएंगे। घोड़ों को एड़ लगाओ। जय भवानी,
9: जय भवानी।
1: रानी जी, फिरंगी पीछे ही आ रहे हैं।
2: मुड़कर मत देखो, मारते काटते आगे बढ़ते चलो।
5: मुल्ला
1: का
5: हत्यारा
1: है।
5: रानी जी, सामने नाला है, उसे पार कर लें। उसे पार कर लें तो फिरंगी हमें छू भी नहीं सकेंगे।
2: पर ये क्या, मेरा घोड़ा तो नाला पार करने के बजाय आसपास चक्कर काट रहा है। ये नया घोड़ा है, तभी अड़ रहा है।
5: रानी जी, जैसे भी वो नाला कूद जाइए, फिरंगी पास आते जा रहे हैं।
2: मैं कोशिश करती हूँ। रामचंद, लगता है ये घोड़ा साथ नहीं देगा।
5: रानी जी,
2: तुम मेरी चिंता छोड़ो। रामचंद्र, तुम्हारे साथ दामोदर राव है, उसे लेकर फौरन निकल जाओ। हाँ, अपनी तलवार से मुझे।
5: नहीं, ये आप क्या कह रही हैं रानी जी?
2: फिरंगी मेरी देह को छुए, इससे अच्छा है तुम ही मेरे देह का अंत कर दो। अरे मैं कहती हूँ,
10: रानी जी, कम ऑन बॉयज।
5: रानी जी, संभालिए, वो फिरंगी सर पर वार कर दिया। हाय आधा माता कटिया, एक आग बाहर निकल आई। रानी जी, कुछ फिरंगी ने छाती पर वार कर दिया।
9: जय भवानी।
5: रानी जी, ओ सिर और छाती से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। करने वाले दोनों फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया लगता है। रानी जी, बेहोश हो रही है। मैं आ रहा हूँ रानी जी।
2: रामचंद्र राव,
5: मैं आ गया रानी जी।
2: अब मैं नहीं बचूंगी।
5: ऐसा ना कहिए रानी जी।
2: देखो फिरंगी मेरी देह को हाथ में लगा सके। रानी जी,
5: आकर बोलो। आप निश्चिंत रहे रानी जी, मैं आपको बाबा की कुटिया में ले चलता हूँ रानी। हाँ, गंगा दास बाबा

0: प्रेम जी वहां तक नहीं पहुंच सकते, मैं आपको वहीं ले चलता हूं। बाबा
1: कौन? अरे
0: ये रानी जी है बाबा। बाबा झांसी की रानी लक्ष्मी बाई।
1: ओह इन्हें भीतर ले चलो बेटा। हाँ हाँ यहाँ लेटा दो। हाँ बेटी बेटी मुंह खोलो, बेटी मुंह खोलो। हाँ पियो पी लो बेटा, गंगा जल है ये, पी लो।
0: रानी जी
1: आज भवानी भवानी से जा मिली है।

आनन फानन में बाबा ने अपनी कुटिया तोड़ डाली। एक तपस्वी की कुटिया की पवित्र लकड़ियों की चिता बनी। रानी की मृत देह को देखते ही देखते आग की लपटों ने भस्म में परिवर्तित कर दिया।

निर्देशन वीनस उमेश तरकसवा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है. दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल. सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस. पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी. अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल. हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना. एक्सीडेंट कभी होता ही ना. द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो. और अगर पांचों की होती तो वो जीवन वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए. दिस इज द पावर दैट वी हैव. लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर. दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी वेलकम।
1: ओम शांति।
2: आपका बीइंग ब्लिस में स्वागत।
1: थैंक यू सो मच।
2: लास्ट टाइम आप कह रही थी कि वांट है, जस्टिफिकेशन है, और क्या क्या शब्द था आपका,
1: पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
2: चलिए
1: कि ये मेरी क्रिएशन है।
2: मैंने गुस्सा किया, मेरी क्रिएशन है, मैं चाहता भी हूं, वांट भी है, और मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूं कि हाँ यार उसने ऐसे बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, रिक्शा वाला सामने गाड़ी एकदम ले आया, मुझे ब्रेक मारनी पड़ी, तो क्या, चलो उसको भी मैं अपना मानता हूं, लेकिन ये सारी चीजें कोई रिजल्ट नहीं ला रही है।
1: ये बहुत बड़ा रिजल्ट है।
2: क्या?
1: ये बहुत बड़ा रिजल्ट है जब हम किसी भी आदत को इतने सालों से या पता नहीं और भी कितने पहले से जस्टिफाई करते आए थे, और आज हम उसको अगर जस्टिफाई नहीं कर रहे, जिस चीज को हम सही बोलते आए थे, आज तक हमने कहा गुस्सा नेचुरल है, टेंशन आज के समय में नेचुरल है, हर्ट ऑब्वियस है, बुरा तो लगेगा ही, नेचुरल है, ये सब जस्टिफिकेशंस थे।
2: तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं झूठा झूठा जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ और ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, अंदर से नहीं है?
1: हाँ, तो फिर वो तो हमें पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा ना, एम आई एक्सेप्टिंग कि दिस इज डैमेजिंग फॉर मी।
2: क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है जस्टिफाई करता हूँ, हाँ मैं गुस्सा किया, हाँ मैं निश्चय
1: गुस्सा किया, इज नॉट द जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन इज ये मेरे लिए हानिकारक है, दिस इज डैमेज।
2: हानिकारक है तो है यार, मैंने बोल दिया, मैं क्या करूँ, नहीं बदल सकता, मैं क्या करूँ, जाओ,
1: मेरा नुकसान हो रहा है। Am I accepting this? कि मेरा नुकसान हो रहा है, हर क्षण मेरा नुकसान हो रहा है। Do I understand the magnitude of the damage that I am creating to myself?
2: Problem ये है, जब तक कोई नुकसान मुझे नहीं लगता है, जब तक मुझे हॉस्पिटलाइज ना किया जाए कि भाई इसको इतना हाई ब्लड प्रेशर हो गया चिड़ के गुस्से में आके कि ये बीमार हो गया, सलाइन लग गया, तब।
1: अच्छा, मन परेशान रहता है।
2: हाँ।
1: अच्छी नींद जितनी रात को आनी चाहिए,
2: करेक्ट,
1: वो नहीं आती है। आज मेजोरिटी लोग अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं, सोते हैं, ये नहीं कि सभी नींद की दवाई ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इस तरह के कोई सब्सटेंस को भी यूज कर रहे हैं सोने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अपने आप आराम से सो जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन कौन सोता है, दिस आई हैव टू आस्क माई सेल्फ। एंड उसका एक सिंपल टेस्ट है, सुबह जब उठते हैं, चाहे वो अलार्म लगा के उठते हैं या जो आंख खुलती है, फ्रेशनेस कितनी है, क्या मन करता है कि हम 5-10 मिनट और सो जाएं, क्या मन करता है कि हम उस मोबाइल के अलार्म को स्नूज पे लगाकर फिर सो जाएं 10 मिनट के लिए, क्योंकि जितनी देर हम सोते हैं 5 घंटे 6 घंटे या कई बार उससे भी ज्यादा, दो चीजों

0: को आराम मिलना है. एक मन एक शरीर, बोथ नीड टू रिचार्ज नो फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग. बॉडी भी पूरी तरह से रेस्ट करेगी, रिचार्ज होगी, मन भी रेस्ट करेगा और रिचार्ज होगा. हम जब सोने जाते हैं, पूरे दिन में हमने बहुत सारे उथल पुथल क्रिएट की, रिएक्शंस क्रिएट किए, टर्बुलेंस क्रिएट की, नेगेटिव एनर्जीज वातावरण में रेडिएट की, रिटर्न करके भी वो मेरे पास आ रहे हैं. मन में बहुत सारी बातों की सोच चल रही है. फिर रात को बैठे, न्यूज देख ली, नॉवेल पढ़ लिया, कुछ ऐसा कर लिया, कोई सीरियल देख लिया,
1: थ्रिलर
0: देख लिया, मतलब अगेन जो लास्ट इन्फॉर्मेशन भी फीड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टर्बुलेंट है, मतलब नेगेटिव है. न्यूज है बहुत अच्छी नहीं है, सीरियल है उसमें बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही है. इट्स ईदर टॉकिंग अबाउट जेलसी, इट्स ईदर टॉकिंग अबाउट बिट्रेयल, ये इसी तरह की इमोशंस.
1: ज्यादा से ज्यादा सीरियल में बदला,
0: हाँ, रिवेंज, हेट्रेड, गुस्सा तो कॉमन ही है. ये सारे सीन्स को देखते हुए या पढ़ते हुए, और मन ने पहले ही पूरे दिन में ऐसी सीन्स काफी सारे देख लिए हैं, अंदर भी देखे हैं. You know, lot of scenes I'm creating here, lot of scenes happening around me, and then to stamp it all, lot of scenes in the name of entertainment in the night. Nahi, now this is my relaxation time. So relaxation time mein kya lenge? Ye sare scenes, hum aakhri information bharte. Ye sab karke so gaye. It means, gaadi fifth gear mein chal rahi thi, man, fast speed pe, aur wo fifth gear mein rakh ke hi so gaye.
1: न्यूट्रल ही नहीं किया, इंजन ऑफ ही नहीं किया,
0: स्लो डाउन ही नहीं किया. अब 6 घंटे बाद जब हम उठते हैं, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, उसका जो जो होना था पूरी रात में वो हो गया है, लेकिन मन सारी रात
1: उथल पुथल
0: वही थॉट्स में था, क्योंकि उसको स्लो डाउन करके, सारी सिर्फ स्लो डाउन मीन्स सोचना बंद नहीं, जितने इश्यूज क्रिएट थे आज दिन के अंदर, क्या उनको रिजोल्व किया, सॉर्ट आउट किया, मन को आंसर्स दिए, या प्रश्नों के साथ ही सो गए, नफरत के साथ ही सो गए, गुस्से के साथ ही सो गए, तो वो रात को भी ऐसे चलता है. सुबह उठे फ्रेश नहीं है, तो चिड़चिड़े होकर ही उठते हैं. सबसे पहले तो आज का मॉर्निंग सीन हर घर का एक अलग वातावरण है,
1: चाय पे झगड़ा शुरू.
0: पहले एक वातावरण होता था कि भजन बज रहे हैं, अगरबत्ती जल रही है, एक माहौल ही अलग होता था. आज तो उठे पहले लेट, फिर मूड अच्छा नहीं है, फिर चाय पीनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए. अब इस थकी हुई स्थिति में, थकी हुई मीन्स मन की थकी हुई स्थिति में, उस मन को फिर चलाया और 15-16 घंटे, फिर रात को नहीं सोने दिया ठीक से, फिर चलाया और 15 घंटे. दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर years. Today you will find many people जो बैठे बैठे कहीं भी सो सकते हैं. हम public programs में देखते हैं, दिन का time है, आप सोकर आए हैं अभी 7 घंटा, और आप यहाँ सामने बैठ के कुर्सी पे सो सकते हैं. क्यों? क्योंकि नींद की कमी है. क्योंकि कमी तो नहीं है, मैं तो सोकर आया 6 घंटा, शरीर सोकर आया. कहीं भी नींद आ जाती है, ऑफिस में मीटिंग्स में नींद आ जाती है, बैठे बैठे नींद आ जाती है, क्योंकि नींद की कमी है. मन सो नहीं रहा है रात को. कोई भी मन अगर सोएगा नहीं रात को, और फिर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, कई दिन कई साल, तो नींद के बिना व्यवहार कैसा हो जाएगा?
1: ये लाइन कैसी है, क्या करें, हमारा बिजनेस ही ऐसा है.
0: हाँ.
1: हमारा बिजनेस ही फ्लक्चुएटिंग है, हमारा चांदी सोने का सट्टे का बिजनेस है, हमारा शेयर मार्केट का बिजनेस है, रात को प्राइस ऊपर होता है कल नीचे होता है, हमारा गारमेंट का बिजनेस है, हमारा डॉलर का भी ऊपर होता है कभी ये होता है. बातें
0: ये तो राइट है, ये तो होना ही है, लेकिन हमें सिर्फ अभ्यास क्या करना है, डॉलर ऊपर नीचे हो, मन ऊपर नीचे ना हो ना. गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर नीचे हो, मन साथ साथ उतना ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि बिजनेस तो करना ही है.
1: बट मन जुड़ा हुआ है ना बिजनेस से.
0: मन बिजनेस से जुड़ा हुआ है,
1: क्यों नहीं?
0: मन बिजनेस से जुड़ा हुआ है, मीन्स अगेन वी आर सेइंग कि बिजनेस का मन पर प्रभाव, मन का बिजनेस पर प्रभाव, परिस्थिति का स्थिति पर प्रभाव, या स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव. यही तो खेल है सारा सारा दिन. अगर हमने अभी अभी ये जो आपने कहा, दिस वॉज अगेन जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन आई ना, ये इतनी सूक्ष्म.
1: मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन देखो, सबको मालूम है कि बच्चा पैदा

0: भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसीलिए ये बात को अब अपनी वोकैबुलरी से हटाना पड़ेगा कि बात ऐसी थी तो हुआ ही ना। एवरी टाइम आई से दिस ना, आई एम सेइंग आ जाओ, परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो जाओ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है तुम्हारे सामने खड़े होने की, तुम बहुत पावरफुल हो। हम अपने को बहुत कमजोर करते हैं ऐसे समय पर। एक्सेप्ट प्रॉब्लम आई है, एक्सेप्ट, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में अब मुझे नहीं सोचना है। माय इमीडिएट थॉट इज व्हाट नेक्स्ट, सॉल्यूशन व्हाट नेक्स्ट। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया ना, फाइन, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, अब क्या करूंगा, होगा या नहीं होगा। दिस इज वन टाइप ऑफ थॉट। दैट इज वाई द थर्ड स्टेप इज व्हाट थॉट्स टू चूज नाउ। जब सब कुछ गलत हो रहा है, जैसे आपने कहा माँ के लिए एक बच्चा बीमार हो रहा है, बुखार है, जुकाम है ना, ठीक है, तो अब क्या नहीं है ना, बुखार और जुकाम, तो अब क्या करना है, टाइप ऑफ थॉट क्या सोचना है। बट द थॉट्स दैट वी विल क्रिएट टुडे इज क्यों हुआ, मेरा बच्चा इतना रो रहा है, दुखी है, क्या होगा इसका, ये सारी थॉट्स मेरी स्थिति को, एक एक थॉट, एक थॉट के अंदर इतनी पावर है कि या तो वो मुझे ऐसे ले जाएगी या वो मुझे ऐसे उठा देगी। द क्वालिटी ऑफ थॉट एट दैट टाइम,
1: उसकी बॉडी लड़ेगी बीमारी से, बच्चा ठीक हो जाएगा,
0: ठीक हो जाएगा। चाहे वो इतनी छोटी सी चीज हो, चाहे कोई बहुत बड़ी बात हो। आज हमने देखे हैं लोग जिनको कैंसर है, कहेंगे है ना, है कैंसर ना, ठीक है, आई विल ओवरकम दिस। कोई और होगा कहेगा 6 महीना ही है सिर्फ मेरे पास, एंड बेड पर पकड़ लेंगे। अब डॉक्टर ने कहा होगा कि 6 महीना है इनके पास, लेकिन उनका मन उनको 2 या 3 महीने से ज्यादा नहीं चलने देगा। ये मन की पावर है, पावर ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन एवरी थॉट गेटिंग क्रिएटेड एट दैट टाइम। लेट मी बी केयरफुल, लेट मी नॉट से लेकिन बात ऐसी थी, लेकिन ये मेरी नेचर है, मेरी एक थॉट मुझे कहां से कहां लेकर जा सकती है और मेरी एक थॉट मुझे यहां गिरा सकती है, नो जस्टिफिकेशन। तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे आसपास जो है, जो हमें उस समय राय दे रहे हैं, वो कैसी राय देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परमात्मा एक बहुत सुंदर बात हमें सिखाते हैं, समस्या का चिंतन नहीं करो। और ये सारा दिन में हम आज ट्राई कर सकते हैं, डू नॉट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, समाधान स्वरूप बनो। प्रॉब्लम का चिंतन नहीं, सोल्यूशन पर फोकस। हम लोग कहते हैं हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यू नो वी नॉट इवन अवेयर कि हम क्या सोचते हैं। हम कहते हैं हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन डिस्कस प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। कोई भी चैलेंज आए, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा फेलियर भी, एक सिंपल रूल, दिस होल फैमिली और द होल कंपनी या जो भी लोग इन्वॉल्व है, एक रूल हमेशा याद रखना है। जितनी देर हम प्रॉब्लम के बारे में चिंतन कर रहे हैं, एंड प्रॉब्लम के बारे में चिंतन मतलब जो हो चुका, एंड दिस इज अ वेरी थिन लाइन, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, समवन हैज टू बी वेरी वेरी अलर्ट टू सी कि किस बारे में चिंतन हो रहा है। क्योंकि काफी बार हम प्रॉब्लम के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं वी डिस्कसिंग द सोल्यूशन, यू नो, स्पेशली इफ यू सी मीटिंग्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल सिटिंग, कोई सोसाइटी की मीटिंग, कोई कंपनी की मीटिंग, टीम की मीटिंग घंटों चलती है, और ये जो घंटों मीटिंग्स चलती है और वो भी हो जाते हैं, क्योंकि जहां प्रॉब्लम का चिंतन होगा ना, तब ब्लेम गेम भी आएगा, प्रॉब्लम ये आई क्यों, प्रॉब्लम ये किसकी वजह से हुआ। लेकिन जितना भी प्रॉब्लम का चिंतन हो रहा है, ब्लेम गेम हो रहा है, वी आर ओनली डिप्लीटिंग एनर्जी, एंड हम ये नहीं रियलाइज करते कि वो एनर्जी जो उस टाइम डिप्लीट हो रही है, ड्रेन हो रही है, वो हमारा नुकसान कर रही है, क्योंकि हम सोल्यूशन के लिए अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में अगर यू नो, सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे तो अगली बार फिर वो गलती हो जाएगी। प्रॉब्लम का चिंतन मुझे सोल्यूशन से दूर करता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोल्यूशन सामने भी अगर खड़ा होगा, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की जो ताकत चाहिए वो मेरी प्रॉब्लम का चिंतन करने में ड्रेन आउट हो रही है। सो वेरी थिन लाइन एंड लॉट ऑफ अवेयरनेस कि प्रॉब्लम, लोग, किन की वजह से ये प्रॉब्लम आई है।

0: नहीं किया ठीक, क्या करना चाहिए था ठीक, सब कुछ तो होना चाहिए था, हुआ था. एनीथिंग विच इज पास्ट और एनीथिंग फॉर विच समबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू थिंक अबाउट इट. जितनी जल्दी हो सके अपने माइंड को प्रॉब्लम से सोल्यूशन, एंड इट हैज टू बी अ जंप, इट हैज टू बी अ वेरी बिग शिफ्ट. ठीक है, बहुत बात हो गई प्रॉब्लम के बारे में, अब क्या करना है,
1: क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर से आया. सपोजिंग मैं अपने रूम में जाऊं अभी यहाँ से शूटिंग के बाद और देखूं कि मेरे रूम में सांप है
0: पलंग पे,
1: perfect. और मैं बोलूं क्यों आया, कहाँ से आया, एक काम करते हैं, दुनिया को बुलाओ, बोर्ड मीटिंग करता हूँ, वो करूंगा या इमीडिएटली बोले हटाऊं.
0: दिस इज इट, क्यों आया. लोग ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्टाफ कहाँ था, सफाई नहीं की, ध्यान नहीं रखा, कितनी एनर्जी.
1: मैं काट लेता तो मैं मर जाता तो ये मतलब.
0: चलो ठीक है, अगर ये भी जो आपने कहा ना, इसको भगा दो. अब सपोज हमने उसको भगा तो दिया क्योंकि वो तो डेंजरस है, लेकिन उसको भगाने के बाद भी हमने अगर ये चिंतन किया, क्यों हुआ, कहाँ से आया, किसकी गलती थी, यूजफुल. अब हमें लगता है ये नेचुरल है, अब इसको हम नेचुरल कह देंगे. ये जो हम रियलाइज नहीं कर रहे, ये मेरी एक एक थॉट अबाउट समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बात जो हो चुकी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लोग जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. जो मेरे कंट्रोल में नहीं, उस पर सोचना मेरी ताकत को कम करता है. ये तो पकड़ ले बात.
1: क्यों सोचते हैं, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपका एक एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, कन्वर्स कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ चिड़िया क्यों बोल रही है, कितनी सुंदर चिड़िया है, चारों तरफ वातावरण अच्छा है.
0: अब अगर आप कितना भी इस बारे में सोचे,
1: एक बार भी नहीं सोच रहा मैं,
0: बिकॉज यू नो कि यू कैन नॉट कंट्रोल.
1: ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेड है, ठीक है, अच्छा लग रहा है
0: ये सब, लेकिन सारा दिन में वो चीजें नहीं होंगी जो अच्छी लग रही होंगी, ये भी इम्पोर्टेंट है.
1: फिर सारा दिन एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा.
0: अब जो चीजें अच्छी हैं वो तो एक्सेप्ट हो गई, इम्पोर्टेंट है जो कंट्रोल में नहीं है. इवन अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो भी उसको एक्सेप्ट करना है. जो मेरे कंट्रोल में नहीं, उस पर चिंतन मेरी शक्ति को वेस्ट करता है. यू नो इट्स लाइक सपोज मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी पत्थर या ईंट आ जाए, पत्थर है बहुत बड़ा, सॉलिड पत्थर है, और मैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं टूटने वाला है, लेकिन मैं करते जाऊं तो हाथ ही दर्द होगा, पत्थर को तो कुछ नहीं होगा. तो मैं कोई ऐसे लोगों को या सिचुएशन के बारे में चिंतन कर रहा हूँ जो बीत चुका है, एंड आई एम सेइंग क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा. जो बीत चुका है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ कोई कर रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. मैं उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ जो टूट नहीं सकता है, तो उससे क्या हुआ, दर्द मुझे ही होगा. वेन एवर हमारी थॉट्स चल रही हो ना, ऑलवेज स्टॉप एंड चेक, एम आई थिंकिंग अबाउट वॉट इज इन माई कंट्रोल, और एम आई थिंकिंग अबाउट वॉट इज नॉट इन माई कंट्रोल. ही शुड हैव सेड दिस, शी शुड हैव डन दिस, ही कुड हैव डन इट दिस वे, वो इट्स ऑलरेडी हैपेंड. बट हाँ, ये कर सकते हैं, हम उनको जाकर कह सकते हैं, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, आई वुड बी वेरी हैप्पी या आई वुड लाइक इट कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लें.
1: और ऐसा भी तो बोल सकते हैं, उस दिन आपने ये बोला, थोड़ा सा मुझे बुरा लगा,
0: वो हम
1: वो नहीं
0: देखेंगे आगे
1: अगले एपिसोड में
0: देखेंगे कि वो बोलने से फायदा होता है या नहीं होता. इम्पोर्टेंट है जो बीत चुका है उस पर चिंतन मेरी शक्ति को नष्ट करता है. दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हम जैसे प्रकृति रिसोर्सेज का आज इतना ध्यान रखते हैं, बिजली अगर चल रही है कमरे में कोई नहीं है तो इमिजिएटली बंद करेंगे ना. एंड वी सो अवेयर, यू नो वेन वी सेइंग अवेयर, कि बहुत लोग पूछेंगे अवेयरनेस क्या है, वॉट डज इट मीन सेल्फ अवेयर, सेल्फ अवेयर, अवेयरनेस. कमरा खाली है, बिजली चल रही है, वेस्ट हो रहा है, बाथरूम में कोई नहीं है, नल चल रहा है, किचन में कोई नहीं है, नल चल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, अवेयरनेस है ना. अच्छा, कुछ लोग होंगे कमरे में कोई नहीं है, बिजली चल रही है, अवेयरनेस नहीं होगी.
1: गीजर भी चल रहा है, गर्म पानी है,
0: एसी भी ऑन है, कमरे में कोई नहीं है, तो कोई और आके बोलेगा आपको इतना भी अवेयरनेस नहीं है कि वेस्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी. तो देखो, एक को अवेयरनेस है, दूसरे को नहीं है ना. यही हमें सारा दिन करना है. आपको नहीं दिख रहा एनर्जी वेस्ट हो रही है, आज इतनी कमी है रिसोर्सेज की.

0: immediately switch it off. So what are we doing? Gradually shifting from being unaware to aware. Ab kisko awareness hogi aur kisko nahi hogi? Jo knowledgeful hai and important, jiske liye wo priority hai. Kisi ke liye waste nahi hona, ye bahut important baat hai, ye priority hai. Dusre ko farak nahi padta, uski wo priority list pe hi nahi aa raha.
1: Pehle na sister, main jab koi cheez aise nal chal raha hai to chal raha hai, पंखे चल रहे तो चल रहे हैं, पहले मैं चिल्लाता था. फाइनली थक के मैं सिर्फ बंद करना शुरू कर दिया.
0: हाँ.
1: और कुछ तरीका ही नहीं था.
0: वेरी गुड. अब एक और चीज करनी है. जब अंदर का नल चल रहा हो, यहाँ चल रहा है, एक एक थॉट जो चल रही है ना, इट्स लाइक ड्रेनिंग. कोई काम नहीं हो रहा है, उस थॉट से कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन वो चल रही है, चल रही है. आप जाकर उसको बंद करना है. Saying to myself, I'm wasting energy now thinking about all this.
1: Energy का नल
0: बंद, एक एक thought. और ये सिर्फ waste नहीं हो रहा, ये damage भी create करता है. पानी तो सिर्फ waste होता है ना, बिजली तो सिर्फ waste होती है, नुकसान तो नहीं create कर देगा ना अगर नल चल रहा है. ये तो नुकसान भी create कर रहा है, क्योंकि जब ऐसे टप टप टप चलता है ना, मतलब quality बहुत अच्छी नहीं होती है उस time. When it is too many thoughts, it's not very good quality thought. तो दोनों नुकसान हो गए, एक तो too many, तो वो थकावट, and दूसरा not very good quality. तो energy भी अच्छी नहीं है. अब क्या होगा अगर नल चलता रहेगा, you know, अगर tap आपका खुला रहेगा, सुबह आप office चले गए, शाम को जब आपको finally पानी चाहिए, तब तक वो overhead tank खत्म हो गया होगा. जब हमने unnecessary बातों में सोचते गए, सोच रहे हैं, घंटा बीत गया सोच रहे हैं, फिर बात भी कर रहे हैं उसके बारे में,
1: आउट ऑफ कंट्रोल होता है सिस्टर.
0: या बट व्हाट विल हैपन, एनर्जी जब डिप्लीट होती जाएगी, जब उस एनर्जी की जरूरत होगी, कोई बात आ गई और अब हमें उसको फेस करना है. लेट्स से अ सिंपल थिंग कि बच्चा घर पे 8 बजे आता है रोज रात को, आज 9 बज गए अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं लग रहा, सबसे पूछ लिया. अब आई हैव ओनली हैव वन चॉइस, वेट ना. लेकिन वो वेटिंग की क्वालिटी कैसी होती है, अंदर कैसी कैसी थॉट्स चलती हैं, ये हर एक अपने आप की चेकिंग कर ले. अगर उस एक घंटे वेट करने में हमने सब तरह की नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर ली उतनी देर में, तब 99.99% तो बच्चा घर आ ही जाएगा. जब घर आएगा, अगर ये इस तरह की नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी, तो हम उसको पहले डांट देंगे, हम उसको प्यार से अंदर लाकर ये भी नहीं पूछ पाएंगे कि हुआ क्या था, हम चिल्ला के पूछेंगे कि क्या हुआ था, तुम कहाँ थे, लापरवाह हो गए हो, फोन करना भी जरूरी समझते नहीं, विदाउट रियलाइजिंग ही मस्ट हैव जस्ट गॉन थ्रू समथिंग एंड कम. हाँ, तो वो रिएक्शन क्यों, क्योंकि एनर्जी एक घंटे में डिप्लीट हुई. लेकिन 0.01% अगर कुछ हुआ है, सपोज एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट की परिस्थिति को फेस करने के लिए जो मुझे ताकत चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी ताकत ऑलरेडी चिंता करने में वेस्ट कर दी है. सो रिसोर्सेस को अगर सही तरह से यूज ना किया जाए, वेस्ट किया जाए, तो जब रिसोर्सेस की जरूरत होती है, तो वी विल नॉट हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अस. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सारा दिन कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके बारे में चिंतन न कर स्विच को ऑफ करे. दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. चलेंगी थोड़ा, जो आपने कहा ना, अपने आप आ रहे हैं, लेकिन अब उसको देखना शुरू कर दो. हर स्टेप पे रुको, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट, क्या सोचा, अच्छा ये सोच चल रही है, इन माई कंट्रोल, नॉट इन माई कंट्रोल, नॉट इन माई कंट्रोल, ओके चेंज. This is self awareness. अपने आप को देखना, जैसे हम सारा दिन औरों को देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इधर क्या है, उधर क्या है, ये क्या सोच रहा है. एवरी टाइम बाहर से सब कुछ करते हुए एक एक मिनट के लिए अंदर को देखना, ये क्या कर रहा है. एक ध्यान हमेशा अंदर, ताकि जैसे शुरू हो तब उसको तुरंत चुप कराना है, तुरंत उसकी क्वालिटी को चेंज करना है. वी विल स्टार्ट कंजर्विंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी.
1: वंडरफुल सिस्टर, आज इसका होमवर्क करता हूँ, फिर अगले एपिसोड में मिलता हूँ आपसे. थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: नमस्कार. Om Shanti. Thank you so much.
2: Resolve the issues on the mind before sleeping. Give answers to the disturbed mind or give instruction that we will think about this tomorrow. Silence the mind, else the body will sleep. Mind will keep thinking and not get charged. Improper sleep over a period of time makes us sleep deprived. This makes our behavior irritable, tolerance power low, memory power and decision-making power gets affected. If we allow situations to overpower the mind, we start depleting our power. Rise above the situation. Focus on the solution rather than thinking about why the problem happened. Think about the solution, not the problem. Till we keep thinking about the problem, we are thinking about the past, which is not in our control, and we are wasting time and energy.
3: नमस्कार, मी मोनाली सावगत. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: से हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजने तो किसके फायदे के लिए भेजने? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजे?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: ओम शांति। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान दीपक जाधव जी राहतनी रेडियो पुणेरी आवाज से हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। तो दीपक जाधव जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और आप विशेष सर्वेयर है जो खास करके जमीनों का जो है सर्वे करता है करते हैं, और साथ ही साथ उनके डॉक्यूमेंट्स को भी आप जो है करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है कि किसी को अपनी जमीन का डॉक्यूमेंटेशन और फिर सर्वे करना हो तो आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़कर आप इन चीजों को सुचारू रूप से नियम अनुसार कर सकते हैं। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो रही है दीपक जाधव जी से। दीपक जाधव जी बहुत बहुत स्वागत, और मैं चाहूंगा आप अपने बारे में बताइए हमें। स्वागत।
3: मेरा नाम है दीपक प्रकाश जाधव। मेरा कंपनी का नाम है विमल इंटरप्राइजेस एंड सर्वे पिंपरी सिंचोड़ पुणे। मेरा ऑफिस है राहतनी में। मैंने ये कंपनी 2011 में चालू किया था।
2: अच्छा।
3: तब से अभी तक मेरे 1200 कस्टमर 1200 प्लस कस्टमर है। जो बिल्डर्स है, लोकल्स कस्टमर है, आर्किटेक्ट है, डेवलपर्स है, उसमें ज्यादा मेरे कंपनी कुछ लिमिटेड कंपनीज है जिनका साल का जो रहता है कि भाई ये नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी कार्ड बनाना है, जिसका सात बारह बनाना है, ऐसे कंपनी का मेरा काम चलता है।
2: जी जी जी। दीपक जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं पुणे में। ये कितना टाइम हो गया आपको इन कामों को करते हुए?
3: ये 2011 से अभी तक चालू है।
2: अच्छा, 2011 से अभी तक आप कर रहे हैं, मना एक 14 साल की तपस्या आपकी पूरी हो रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है, और निश्चित तौर पे अभी आप सब काम जो है बहुत ही एक लंबा सफर आपने तय किया। तो शुरू शुरू में जब ये बिजनेस आपने शुरू किया या काम करना शुरू कर दिया तो क्या क्या चैलेंजेस आते थे आपके?
3: पहला चैलेंजेस था कि मशीन लेना है।
2: अच्छा।
3: पैसा चाहिए। शुरुआत पैसा है। डिप्लोमा होने के बाद क्या है वो मशीनरी खरीदना है उसके लिए बहुत पैसा, उसी में लोन होता नहीं मशीन।
2: अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ,
3: तो हाँ, क्या मतलब जो है जो व्हाइट पेमेंट दे के लेना पड़ता है, 11 लाख 12 लाख 17 लाख 18 लाख ऐसा मशीन का ये पैसा। उससे पहला मशीन लेते समय बहुत प्रॉब्लम हुआ, इससे दोस्त से पैसा लो, कुछ गहने रखे ले लो, घर से मम्मी से लिया, पापा से लिया, ऐसा करके पूरा फंड बना के पहला मशीन खरीदा था।
2: बहुत बढ़िया। हाँ।
3: तो एक साल में नील किया मैंने पूरा पेमेंट।
2: अच्छा।
3: हाँ, एक साल में। और एक साल में दूसरा मशीन भी ले लिया।
2: क्या बात, क्या बात।
3: हाँ, तो ऐसा स्ट्रगल था स्टार्ट में। अभी कुछ नहीं है, अभी 6-7 मशीन है, ऑफिस है, तब ऑफिस नहीं था, ऐसा भी चल रहा है सबके दुआ से। कस्टमर हैप्पी है तो काम मिलता है।
2: सही बात है, एक बार आपसे कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है।
3: हाँ।
2: तो वो आपको खुद तो कस्टमर ही है, दूसरों को भी आपके साथ जोड़ता है। तो ये काम आपको खुद हो के, जैसे कि एक बार डिप्लोमा हो गया तो प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी को असिस्ट किया या डायरेक्टली आप सीखते गए, कैसा?
3: एक मेरा दोस्त था सचिन लवंडे बोल के, उसने मुझे सिखाया है पूरा।
2: अरे वाह।
3: हाँ, वो उसी में था पहले।
2: हाँ हाँ
3: हाँ, उनसे ये सीखा मैं पूरा।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज के समय में जैसे कि

0: हमारे बहुत सारे यूथ है वो भी कुछ न कुछ करना ही चाहते हैं, तो क्या वो इस फील्ड में आ सकते हैं? तो उसकी मानसिकता क्या होनी चाहिए, कितनी तैयारी उसकी होनी चाहिए, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
1: सर कैसा है, अभी मेरे पास भी जो सर्वर जॉब करते हैं,
0: जी जी जी,
1: वो क्या करते हैं, कम समय में उनको थोड़ा सा जल्दी फास्ट बड़ा होना रहता है। क्या होता है, 6 महीना 4 महीना जॉब किया कि मशीन लेना पड़े, वो बोलते हैं मशीन लेने का और खुद का चालू कर देते हैं। पहला आपको कस्टमर बेस बनाना पड़ता है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो आर्किटेक्ट चाहिए आपको, डेवलपर चाहिए, बिल्डर चाहिए या कंपनी चाहिए, वो नए लोग जो लड़के हैं उनको क्या होता है, फास्ट तुरंत होना चाहिए हमारी कंपनी का नाम बड़ा, तो ऐसा नहीं होता सर। क्या तो सब जो एम जो आने वाले व्यवसाय में, तो उनके लिए बोलता हूँ थोड़ा किसी के पास अनुभव लीजिए, एक साल डेढ़ साल, उसके बाद क्या रहता है, तुरंत तो ये चीज करने में थोड़ा सा गलत है, तो फिर वो क्या करते हैं, थोड़े दिन लेते हैं और मशीन बेचने के लिए फिर निकाल देते हैं, तो ऐसे में वो माइनस जाते हैं। फिर वो व्यवसाय के पीछे जो उनका राज रहता है वो क्या बोलते हैं, नहीं व्यवसाय ऐसा है वैसा है, फिर जॉब करने लग जाते हैं। व्यवसाय ये अच्छा ही है लेकिन थोड़ा समय दीजिए उसको, पहला स्ट्रगल कीजिए, पूरा बात समझ के लिए, कस्टमर मार्केट क्या है, कैसा है, क्या करना पड़ता है, उसके बाद डिसीजन लीजिए खुद का बिजनेस करने के लिए, ये बोलूंगा मैं सर।
0: ये दीपक जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता और तुरंत नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और पेशेंस रखना है। आजकल वो युवा में कहीं ना कहीं कमी आई है और वो चीज आप देख भी रहे हैं, क्योंकि जो लोग सीखने के लिए आते हैं या आपके यहाँ काम करते हैं तो वो भी समझते हैं कि मशीन ले लिया तो काम हो गया। लेकिन मशीन लेने के लिए भी पैसे लगेंगे और उसको फिर मेंटेन करना है, फिर काम आपको चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए वो सिरदर्द भी हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको पहले टीम बनाना है, जैसे दीपक जी बता रहे थे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें कोई भी काम करना है, बिल्कुल काम तो करना ही है, क्योंकि आपको जीना है, मुझे जीना है, सबको जीना है, तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन काम अगर आप सुचारू रूप से सही ढंग से समझ के और किसी के निरीक्षण में आप करते हैं तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, बजाय कि आप जल्दबाजी में मशीन लेके अपना ही कुछ सेटअप शुरू कर देंगे तो सारा चीज गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक कम्युनिटी बेस आपका जो है अच्छी पहचान बनाए, लोगों से मिले जुले और फिर आप जो है सुचारू रूप से ईमानदारी से अच्छे से काम करने का सोचे। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में खाना भी ठीक से नहीं बनता, चाय भी ठीक से नहीं बनता। चाय भी बनाना हो तो आपको पेशेंसली हर चीज को सामने सब चीजें हो आपके पास और बड़े ध्यान से पूर्व से प्रेम से अगर आप बनाते हैं, इसलिए होटल में भले ही आप 5 स्टार होटल में जाके खाना खाओ, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, सब चीजें बाजू में आसपास में बहुत सारी चीज, लेकिन वो घर में जो फुर्सत में माँ प्यार से बनाया खाना है उसकी तुलना में वो कम ही लगता है। तो इसलिए हमेशा जो है अपनों से प्यार से जीवन जो है वो समृद्ध बनाता है, भले पैसा ना हो लेकिन आप कीमती, आपका कीमत बहुत लगता है, आपका आपको देखने वाले आपको मिलने वाले खुशी फील करते हैं, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, अगर ईमानदार है, वैल्यू बेस्ड इंसान है और सबका कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बेहतरता आएगी। ऐसा कहा जाता है मानवता का पहला धर्म है नमन, एक दूसरे को सम्मान दे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, ऐसे नहीं कि उसका कुछ भी हो जाए मैं पहला। तो फिल्मी चीजें नहीं चलती, फिल्मी चीजें 3 घंटे के लिए फिल्म में अच्छा है लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 100 साल की जिंदगी बितानी होती है, जहाँ पर सबको साथ में, पत्नी बच्चे माँ बाप सबको लेके चलना होता है, परिवार को लेकर चलना होता है, तो इसको आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मतलब बड़े बेहद तरीके से आपको सोचना है। दीपक जी मैं चाहूंगा कि आपका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता था ये सब काम करने के लिए, क्योंकि आपने कहा एक साल में आपने मशीन लिया और उसको फिर पे भी किया, तो काफी मेहनत किया होगा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप खर्चा लिया, एक साल में पे भी किया और नया मशीन भी लिया, तो ऐसा ये भी लगा है कि कुछ ज्यादा या तो मेहनत किया होगा आपने।
1: सही है, क्या होता है जब अपन

0: एक ध्येय रहता ना खुद का, स्ट्रगल भाई ये करना है, ही करना है मुझे। तो जब वो करना है ना, तो वहाँ तक समझो मुझे बॉम्बे यहीं से पैदल जाना है, तो मतलब जाना ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऐसा मैंने रख दिया ना, तो जाना ही पड़ता है, इसके लिए भरना पड़ता है, नींद नहीं, खाना नहीं, देखना पड़ता, काम काम।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वजह से वो पूरा मेरा हो गया। और उसी में कहता है जब मुझे ऐसा लगता है कुछ काम का थोड़ा ये है, तो मैं खुद थोड़ा सा मेडिटेशन घर पे कर देता हूँ, या मेरे दोस्त लोग के साथ बैडमिंटन खेलने जाता हूँ,
1: एक घंटा।
0: फिर कुछ भी नहीं हुआ तो मेरी मम्मी गांव रहती है भीड़ में, तो मैं उससे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, या महीने में दो बार तो भी मैं घर जाके आता हूँ, तो उसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दीपक जाधव जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। और मैं चाहूंगा कि युवाओं के लिए जो बातें आपने बताया बहुत ही सही बताया, कि अपने करियर को बनाना है या इस फील्ड में आना है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, सर्वेइंग का, डॉक्यूमेंटेशन का, तो सीख के जरूर आगे बढ़ सकते हैं, बस पेशेंस और एक सभी को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है इसमें। और मैं चाहूंगा जाते जाते एक आज के समय में जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं उसमें ये जो ब्रह्म कुमारी का फिलॉसफी है या ध्यान धारणा है, वो कितना जरूरी है, आप क्या सोचते हैं?
0: नहीं, इसमें पहला कैसा था कि भाई लोग जो थे वो खेती बाड़ी में काम करते थे, जॉब करते थे, खाने में सही टाइम पे खाते थे, ये करते थे। अभी कैसा है, जो मिला रास्ते पे वो खा ले लेते क्या उससे आपके बॉडी को 100% पचन नहीं होता, ये नहीं होता, बहुत है। इसके लिए सुबह व्यायाम करना पड़ेगा, वॉकिंग जाना पड़ेगा, व्यायाम करना, ध्यान करना पड़ेगा। जिसको वो ध्यान करते वॉकिंग नहीं जा सकते, तो वो अपने सेंटर में आ सकते इधर मेडिटेशन के लिए। फिर इधर आने के बाद सबको पता चलता है कितना खाना है, क्या खाना है, कैसा खाना है क्या, तो उससे तो पूरा हो ही जाता है।
1: जी जी जी, दीपक जी बहुत ही अच्छी बात बताया। और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ अब आ गए हैं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ से सीखेंगे, कितना टाइम आप देना चाहेंगे, रेगुलर आएंगे, कैसा?
0: देखो अभी तो मैं बाजू में रहता हूँ, मैं तो हर बार चलते फिरते सामने से आता जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, दीदी से मिलता हूँ, बात करता हूँ, ये तो बहुत सालों से आता जाता हूँ।
1: जी,
0: मैं जो नहीं आते एक बार एक दो बार आज ही शिविर अटेंड कीजिए, उसके बाद खुद आपको खुद बोलता है आदमी नहीं यार जाके आएंगे।
1: बिल्कुल,
0: जब अंदर से खुशी मिलती है ना, तब आदमी खुद होके आते हैं।
1: हाँ दीपक जी, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए?
0: सबके लिए एक बोलूंगा मैं,
1: जी जी,
0: कोई भी चीज करते समय कर्म और धर्म दो चीज पे ध्यान रखिए। क्या?
1: बिल्कुल, कर्म और धर्म।
0: हाँ, अपना एक बार शिविर इधर आगे ज्वाइन कीजिए, सब आपको पता चल ही जाएगा। जब नहीं आएंगे तो नहीं पता चलेगा, आएंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो खुद के लिए सीखेंगे, इतना बोलूंगा।
1: चलिए दीपक यादव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आप यहाँ आइए, सीखे और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया, क्योंकि आपके पास में है तो आप इसका लाभ जरूर ले सकते हैं, और जैसे आप खुद लाभ ले रहे हैं इन चीजों का, तो आप भी चाहते हैं कि दूसरे भी इसका लाभ उठाए, अपने जीवन को बेहतर शांति और प्रेम से गुजारें। तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं इन भविष्य के लिए आपको, ओम शांति। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहां हमने दीपक जी को सुना, दीपक जाधव जी को सुना, जो खास सर्वेयर का काम करते हैं और जो भी खेती बाड़ी है, जमीन है, इन सभी का डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको प्रॉपर मोज मापनी जिसको मराठी में कहते हैं, वो चीजें करते हैं, तो ये चीजें हमारे लिए सबके लिए जरूरी है, और ये सबके प्रॉब्लम्स को भी हल करते हैं। कई बार मोज मापनी में जो गड़बड़ हो जाती है, कम हो गया, ज्यादा हो गया, मेरा इतना है, वो मेरा इतना है, हम आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन एक मशीन के साथ और गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ जब हम सर्वे कर लेते हैं, तो हर एक को अपना जो है हिस्सा मिल जाता है, ठीक से मिल जाता है, झगड़े खत्म हो जाते हैं, और शांति से वो अपने अपने मार्किंग करके अपना कंपाउंड बना के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये

0: प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में बदलने का काम दीपक जी का है। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं बहुत जल्दी, तो लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में बदलिए, तो आपका जीवन अपने आप खुशनुमा हो जाएगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: आदत बने कैसे? करते करते करते करते आदत बने। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

न मोहब्बत का कहीं डर के रुका है। दरबार में चाहूं कि कहीं इश्क झुका है।

सिखाया तो क्या इश्क के मारों का होगा।

चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,

मुझे जंग जी कहे, कहने दो जी कहता रहे।

कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।

0: Java.
1: Hai, gham ka fasana ban gaya achha.
0: Achha ji.

अलबेले हैं, सारी दुनिया झेले हैं, अपने तो सबने लाखों बच कहने को अकेले हैं, अरे सबका

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुर अल्लाहु अकबर
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

जान है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं भाई।

गई पंछी, हाय बिछुड़ गई सजनी, हाय बिछुड़ गई सजनी। उम्मीद भरा पंछी था खोज रहा सजनी, कहता था यही पंछी, हाय बिछुड़

कहता था यही पंछी हाय बिछुड़ गई सजनी।

में लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम गए काम।

अब हम गए काम से, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से।

लगता है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता